0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूर इज्जुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: नमस्कार रसिक श्रोते हो, मी शिवाजी साटम। आपण ऐकत आहात 107.1 FM रेनबो वाहिनी, जुन्या नव्या मराठी गाण्यांची आणि गप्पांची मेजवानी।
2: आज आपली मस्तपैकी फळ भ्रमंती असं म्हणू शकतो आपण। तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले की जिथं आपल्याला उन्हाळा म्हटल्यानंतर किंवा मित्रमैत्रिणींसोबतची धमाल म्हटल्यानंतर अनेकांना जी गोष्ट अगदी सहज आठवते ती म्हणजे चिंच। बरं, गंमत अशी आहे की आत्ता सध्याच्या काळात शहरी भागामध्ये आपल्याला चिंचांची झाडं फार कमी दिसतात।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक दारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: वी हैव अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप विद स्वीडन।

0: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर

0: वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
4: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नेदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर
3: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said, democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach. Calling for greater collaboration in emerging sectors, Prime Minister Modi said, India and the Netherlands should combine Dutch expertise with India's speed and skill to expand cooperation in innovation, sustainability, investment and defense.
4: भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ता रहा मैं आपको आश्वासन देता हूं भारत में आपकी ये खोज सफल होगी और सार्थक भी अब आपको भारत में और बोल्डली वेंचर करना है
3: Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson, to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with President of the European Commission, Ursula von der Leyen. This engagement represents the third leg of the Prime Minister's broader European tour and his first visit to the continent since the landmark India-European Union Free Trade Agreement, FTA, took effect in January 2026. The visit follows a high growth trajectory in economic engagement with bilateral trade reaching a record $7.75 billion in 2025 and Swedish FDI into India totaling $2.8 billion between 2000 and 2025. More from our correspondent.
5: Sweden, one of the world's most innovative economies, finds a natural synergy with India's digital talent pool. Currently, over 280 Swedish companies operate in India, while 75 Indian firms have established themselves in Sweden. A unique highlight of the visit is the joint address by the Prime Minister to the European Roundtable for Industry alongside the European Commission President. Defense and security cooperations have evolved into a central pillar moving towards industrial integration. This relationship is anchored in a 2009 Defense Cooperative Agreement and 2019 General Security Agreement. Industrial trust is exemplified by Swedish major establishing a fully owned production facility in Haryana under Make in India. It may be noted that such investment drive local employment and capacity building. Collaboration in artificial intelligence and emerging technologies provide the bedrock of this partnership. Future cooperation prioritizes AI, digital and the Internet of Things. Furthermore, the two nations are collaborating on space exploration with the Swedish Institute of Space Physics providing instruments for ISRO's Venus Orbiter mission. The green energy transition is central to the bilateral agenda. A standout success is the LEAD IT initiative launched in 2019 to guide the heavy industries towards a low-carbon economy. It may be noted that at COP28, the two prime ministers launched LEAD IT 2.0, emphasizing technology transfer and the industry transition platform to mobilize technical support. Sakshi Singh, Akashvani News, Gothenburg, Sweden.
3: India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. This deep-rooted bond is marked by historic milestones such as the centenary of Nobel laureate Rabindranath Tagore's 1926 visit to Sweden. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashvani, Indian Ambassador to Sweden Anurag Bhushan emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations.
6: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense, but this relationship has now outgrown from a buyer-seller relationship to more of defense partners. And both countries, companies, each other, India and Sweden, they are looking to co-develop and co-produce equipment. They have been galvanized by Honorable Prime Minister's initiatives such as Atmanirbhar Bharat, Make in India, and also infrastructure development that has happened.
3: Within days of levying high customs duties on precious metals, the government has imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effects. The government on Wednesday had hiked import duty on precious metals from 6% to 15%. The goods under restricted category needs government license for imports. The Delhi government has taken a significant decision to reduce the value-added tax on aviation turbine fuel in the national capital from 25% to 7%. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the decision has been taken in line with Prime Minister Narendra Modi's emphasis on strengthening connectivity and economic activity with the objective of providing relief to the aviation sector, promoting tourism and logistics activities. The Chief Minister informed that the concessional rate will initially remain in force for a period of 6 months. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Archaeological Survey of India, ASI, has granted the Hindus an unrestricted access to the monument at Bhotshala complex in Dhar district of Madhya Pradesh for worship and other purposes. The ASI's decision came a day after the Madhya Pradesh High Court ruled that Bhotshala in Dhar was a temple of goddess Saraswati. More from our correspondent.
7: Quoting the ASI's order, an official said that Bhotshala was a center of learning and research on Sanskrit language, grammar and literature besides being a temple. The official further said that the Hindu community shall have an unrestricted access to the complex in connection with the ancient practice of learning and worship of goddess Saraswati. Earlier on Friday, the Madhya Pradesh High Court declared that the Bhotshala complex in Dhar district is a temple dedicated to Goddess Saraswati, and the center and ASI can decide on its administration and management. The High Court's Indore bench also quests the April 7, 2003 order of the Archaeological Survey of India that allowed Muslim

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Welcome back Mumbai. 8:41 और 16 सेकेंड और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर FM Rainbow. जी हाँ, 17 मई और 2026 दिन रविवार का, यानी छुट्टी का दिन, संडे का दिन, मस्ती का दिन. तो हमारे बहुत सारे लिसनर्स तो शायद अभी उठे भी नहीं होंगे, क्योंकि आज थोड़ा रिलैक्स मूड में होंगे, क्योंकि आज तो कहीं जाना नहीं है, काम नहीं है. एनीवे, रविन आपके लिए हाजिर हो गया है और कार्यक्रम होगा मस्त मुंबई, और हमेशा की तरह पूरी मस्ती के साथ इस कार्यक्रम का हम मज़ा लेंगे. तो चलिए आगाज़ करते हैं एक बहुत ही प्यारे सी गीत से. हैव ए लवली संडे.

जी हाँ दोस्तों, पाँव में डोरी बहुत ही प्यारा गीत। और 8:50 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। और चलिए आपको आपके बचपन की याद दिला देते हैं। सुबह सुबह थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जब हम मतलब छोटे बच्चे थे और बचपन में हम सभी को बार बार इंजेक्शन्स लगते रहते हैं, टीके लगते रहते हैं। और जब भी ऐसा होता है और हमारे पेरेंट्स हमें डॉक्टर के क्लिनिक पर लेकर जाया करते थे, तो जैसे ही डॉक्टर के हाथ में हम इंजेक्शन देखते थे, टीका देखते थे, तो एकदम रोने लगते थे। और फिर किस तरह से, कितने स्ट्रगल के बाद वो टीका बहुत सारे बच्चों को लगाया जाता है, यानी बचपन में आपको और हमें भी लगा है, उसका एक जो मंज़र होता है, नज़ारा होता है वहाँ पर डॉक्टर के क्लिनिक पर, वो देखने लायक होता है। एनीवे, मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की, यानी हिंदी में कहते हैं चेचक का टीका। और बहुत सारे लोगों के हाथ पर तो निशान भी होंगे। तो बचपन में हम सभी को ये चेचक का टीका लगा है।

लेकिन इसका आविष्कार किसने किया है? मुझे याद था दोस्तों, लेकिन पता नहीं अचानक आजकल मेरी मेमोरी को क्या हो रहा है, मैं भूल गया। तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें बताएं कि चेचक के टीके का आविष्कार, जी हाँ, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है। तो व्हाट्सएप के ज़रिए जल्दी से जल्दी हमें इसका जवाब दें, जिनके जवाब सही होंगे उनके नाम मैं ऑन एयर लूँगा। तो जल्दी कीजिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, और सुनते रहिए एफएम रेनबो, और थोड़ा अपने बचपन को भी याद कर सकते हैं। अगला गीत बहुत ही प्यारा गीत, रफ़ी साहब की आवाज़।

जी हाँ दोस्तों, ये रेशमी जुल्फ़ें हैं, बहुत ही प्यारा गीत था। और 9:05 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान, लव यू ऑल। और मैंने एक सवाल पूछा था कि बचपन में हम सभी को जो चेचक का टीका लगा है

उसका आविष्कार किसने किया है। और बहुत खुशी की बात है, साथ ही साथ हैरानी की बात है कि टीका आपको बचपन में लगा था, लेकिन टीके का आविष्कार किसने किया था ये आपको अभी तक याद है। और इस याद में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गूगल बाबा का। एनीवे, जिन लिसनर्स के सही जवाब हैं उनके नाम मैं बताना चाहता हूँ। चेंबूर से प्रदीप अनंत कृष्णन जी, ग्रांट रोड से फिरोज सिंगनपुरिया जी, और मानखुड़ से प्रकाश शिंदे, प्रणव शिंदे, और महेश बोरा अजमेर राजस्थान से, चेतन कुमार गया बिहार से, और आवर ग्रेट लिसनर राकेश माथुर जी पुणे से, और प्रथमेश रमेश मुंबई विक्रोली से, और पंकज माहोड़ अमरावती से, अंजलि पाटिल, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट तनुजा शर्मा अंधेरी से, और लाली झा अजमेर से। जी हाँ दोस्तों, ये व्हाट्सएप का कमाल है कि कितनी दूर दूर से चंद पलों में, चंद सेकंड्स में मैसेजेस आ जाते हैं। एनीवे, बचपन की यादें ताज़ा हो गई चेचक के टीके की वजह से। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गीत है। जी हाँ, हमारे दिल का क्या हाल है सबको पता है, तो आप भी जान लीजिए, जब पत्ते पत्ते को पता है, बूटे बूटे को पता है, तो

जी हाँ दोस्तों, 9:12 और 6 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। 1986 में एक फिल्म आई थी और इस फिल्म का नाम था नाम। जी हाँ, फिल्म का नाम ही नाम था, भट्ट साहब ने नाम ही रख दिया। और फिल्म के संगीतकार थे LP साहब यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। इस फिल्म में पंकज उदास जी ने एक बहुत ही खूबसूरत गीत गाया था, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ये गाना कितना सुपरहिट हुआ था हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और पंकज उदास जी इस गाने के बाद एक बहुत बड़े सिंगर बनकर सामने आए थे। वैसे वो इससे पहले गाने गा रहे थे लेकिन उन्हें एक अच्छा गज़ल सिंगर ही माना जाता था और ये गाना उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक साबित हुआ। आज उनकी बात करना बनता है क्योंकि आज है 17 मई और 17 मई 1951 में सौराष्ट्र में पंकज जी का जन्म हुआ था। भारत सरकार ने उन्हें उनके काम के लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए पद्मश्री और पद्मभूषण जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया था। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। और एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, बहुत ही खूबसूरत गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जी दोस्तों, तेरे नैन बहुत ही खूबसूरत गीत और मैं आपके साथ आपका रविन। और थोड़ा सा टाइम बचा है क्योंकि 9:30 पर होगा हमारा विशेष कार्यक्रम वतन का राग। और चलते चलते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही कमाल के शानदार जानदार प्रोड्यूसर

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि वीके कृष्ण मेनन का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 3 मई। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, शिवाजी नगर भोपाल से जयप्रकाश दुबे और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम।

0: और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

चंपारण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से जुड़ी वो भूमि जहां सत्य ने पहली बार अन्यायी सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा था, जहां से नील की खेती करने पर मजबूर शोषित किसानों की मुक्ति का महामंत्र गूंजा और पूरे देश में छा गया। चंपारण यदि गांधी जी को महात्मा बनाने वाली प्रयोगशाला थी, तो उस प्रयोगशाला में प्रज्वलित सबसे प्रकाशवान दीपक थे राजकुमार शुक्ल। उन्हें चंपारण आंदोलन का वास्तविक शिल्पकार माना जाता है। राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त सन 1875 को चंपारण जिले के सतवरिया गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार था जिसकी अपने क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके पिता का नाम कोलाहल शुक्ल था, जो मूलतः सीवान जिले के निवासी थे, लेकिन बाद में वो सतवरिया आकर बस गए थे, जहां उन्होंने काफी भूमि अर्जित की। इसी समृद्ध परिवार में राजकुमार शुक्ल का पालन पोषण हुआ। इस तरह वो एक समृद्ध और प्रभावशाली किसान थे, जिनकी आर्थिक स्थिति उस समय के औसत किसान से बहुत बेहतर थी। उनका विवाह केवला देवी से हुआ था। उनके पारिवारिक जीवन में उनकी पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पंडित राजकुमार शुक्ल को एक सत्याग्रही के रूप में विकसित करने और संघर्षों में साथ देने में केवला देवी का महत्वपूर्ण योगदान था। उनके परिवार में दो पुत्रियां थीं, जिन्होंने उनके संघर्षपूर्ण जीवन को बहुत करीब से देखा था। राजकुमार शुक्ल ने अपनी युवावस्था में बेतिया राज में एक मुहर्रिर यानी मुंशी के रूप में भी कार्य किया था, जहां उन्हें प्रशासनिक और विधिक प्रक्रियाओं का आरंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह कृषि तथा सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार की एक अलग ही कहानी लिखी। अपनी ही कृषि भूमि पर किसानों के लिए अलग नियम, कानून और प्रतिबंध लागू हुए, जिसने किसानों की दुर्दशा कर रखी थी।

19वीं शताब्दी के मध्य से ही यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं और ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में उन्होंने किसानों पर अत्याचार का एक संगठित ढांचा तैयार कर लिया था। उन्होंने तिनकठिया खेती की प्रणाली लागू की थी। ये एक दमनकारी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के प्रत्येक बीघा यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। ये प्रणाली बेहद शोषणकारी थी क्योंकि किसानों को नील की फसल के लिए जो मूल्य दिया जाता था वो उनकी लागत से भी कम होता था। बागान मालिक स्वयं ही मूल्य निर्धारित करते थे। नील की खेती से भूमि की उर्वरता का भी ह्रास होता था क्योंकि नील की जड़ें गहरी होती थीं जो भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती थीं, जिससे उस भूमि पर बाद में अनाज उगाना कठिन हो जाता था। इसके साथ ही 40 प्रकार के अवैध कर भी किसानों पर लगाए गए थे। राजकुमार शुक्ल स्वयं बेलवा कोठी के अंतर्गत एक रैयत थे, इसलिए इन प्रताड़नाओं का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। अंग्रेजों के इस शोषण और अत्याचार ने उन्हें भीतर तक आंदोलित कर रखा था। उनकी संघर्ष यात्रा इन्हीं अत्याचारों के प्रतिरोध से आरंभ हुई। उनका प्रतिरोध सन 1907-8 के आसपास स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और भारत की धरती पर ये उनका पहला आंदोलन था, लेकिन चंपारण में गांधी जी के आगमन से लगभग एक दशक पहले भी किसानों ने सामूहिक विद्रोह किए थे, जिसमें शेख गुलाब और शीतल राय जैसे नेताओं की अगुवाई में बागान मालिकों के गुंडों और कारिंदों को कड़ी चुनौती दी गई थी। राजकुमार शुक्ल ने इस दौरान स्थानीय पंचायतों को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो चाहते थे कि किसान अपने विवादों को निलहे साहबों की अदालत के बजाय अपनी पंचायतों में सुलझाएं। राजकुमार शुक्ल की ये पहल ब्रिटिश सत्ता और बागान मालिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि इससे उनके न्यायिक और प्रशासनिक एकाधिकार को खतरा पैदा हो गया था। वो बागान मालिकों के लिए एक बड़ा अवरोध बन गए थे। परिणाम स्वरूप उन्हें व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई गई, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई, उनका पशुधन भी छीन लिया गया। उन पर दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। बेलवा कोठी के बागान मालिकों ने उन पर चोरी, मारपीट और दंगे के आरोप लगाए। सन 1914 में एक बागान मालिक के साथ हुए विवाद के कारण उन्हें कुछ हफ्तों के लिए जेल में भी डाला गया, लेकिन राजकुमार शुक्ल का प्रतिरोध लगातार जारी रहा। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, उनका संकल्प अडिग रहा। अपमानजनक स्थिति और आर्थिक नुकसान के बावजूद वो अंग्रेजों को चुनौती देते रहे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि चंपारण की जो समस्या है वो केवल स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध करके सुलझाई नहीं जा सकती है, इसके लिए एक राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है और उनकी दृष्टि में इस समस्या को केवल गांधी जी ही सुलझा सकते थे।

राजकुमार शुक्ल के इस संघर्ष में उनके साथ जुड़े पीर मोहम्मद मुनीश। वो एक पत्रकार थे और कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप में वो चंपारण के किसानों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें लिखते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में निकलने वाला ये पत्र किसानों की पीड़ा का दर्पण बन गया। पीर मोहम्मद मुनीश के साथ मिलकर राजकुमार शुक्ल ने इस संदर्भ में गांधी जी और कई राष्ट्रीय नेताओं को पत्र भी भेजे थे। दोनों की जोड़ी ने ही मिलकर वो वैचारिक धरातल तैयार किया जिस पर बाद में चंपारण सत्याग्रह खड़ा हुआ। दिसंबर सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण मजुमदार जैसे अनेक नेताओं से राजकुमार शुक्ल खुद मिले, लेकिन सभी ने उनसे कहा कि वो स्थानीय स्तर पर इस समस्या को सुलझाएं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब गांधी जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि आपको चंपारण चलना होगा, वहां किसान मर रहे हैं। हालांकि अधिवेशन में उनके प्रयासों से चंपारण में किसानों की दुर्दशा पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया था, लेकिन राजकुमार शुक्ल इससे संतुष्ट नहीं थे। वो चंपारण में गांधी जी की उपस्थिति चाह रहे थे, जैसे नियति भविष्य लिख रही थी। अधिवेशन के बाद गांधी जी ने चंपारण जाने में अपनी असमर्थता जताई और राजकुमार शुक्ल साये की तरह उनके पीछे हो लिए। गांधी जी कानपुर गए, शुक्ल जी वहां भी पहुंच गए। गांधी जी साबरमती आश्रम लौट आए तो वो आश्रम में डेरा डालकर बैठ गए। गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो वो पहले से ही वहां मौजूद थे। गांधी जी ने बाद में लिखा भी कि इस अनपढ़ किंतु संकल्पवान किसान ने मुझे जीत लिया। अंततः 9 अप्रैल सन 1917 को वो राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण के लिए रवाना हुए और 10 अप्रैल को दोनों पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे। दोनों की साधारण वेशभूषा देखकर नौकरों ने उन्हें अछूत समझ लिया तथा कुएं से पानी तक लेने से रोक दिया। यही वो बिंदु था जब गांधी जी ने महसूस किया कि भारत की लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं, सामाजिक कुरीतियों से भी है। इसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां जेवी कृपलानी और छात्रों ने उनका स्वागत किया। 15 अप्रैल सन 1917 को वो मोतिहारी पहुंचे, जो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय था। यहीं से आरंभ हुआ चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जिसने ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दिया। कमिश्नर ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इस सरकारी आदेश की विनम्रता पूर्वक अवहेलना की। 18 अप्रैल को मोतिहारी की अदालत में गांधी जी की पेशी हुई। राजकुमार शुक्ल ने आसपास के गांवों में सूचना फैला दी, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में किसान अदालत परिसर में जमा हो गए। ये जन सैलाब ब्रिटिश सत्ता के लिए अप्रत्याशित था। और फिर गांधी जी ने अदालत में अपना ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने कानून तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज और मानवीय सेवा के उच्चतर कानून का पालन करने के लिए जिला छोड़ने से इनकार किया है। उनका बयान बिजली की तरह पूरे देश में फैल गया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, मुकदमा वापस ले लिया गया और गांधी जी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति मिल गई। ये भारत में सविनय अवज्ञा की पहली बड़ी नैतिक जीत थी। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ गांव गांव घूमते रहे। गांधी जी ने उन क्षेत्रों को देखा जहां अत्याचार चरम पर था। इस जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद और जेबी कृपलानी आदि के साथ एक टीम तैयार हुई। राजकुमार शुक्ल ने किसानों को निर्भीक होकर बयान देने हेतु प्रेरित किया और लगभग 10,000 किसानों के बयान दर्ज हुए। इस आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ। तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई, किसानों से वसूले गए अवैध धन का एक हिस्सा लौटाने का आदेश हुआ और अन्यायपूर्ण कर से भी मुक्ति हुई। राजकुमार शुक्ल ने इस आंदोलन के बाद भी शिक्षा, स्वच्छता और जन जागरण के कार्य में स्वयं को समर्पित रखा। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। वो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और खादी के प्रचार में जुट गए तथा किसान सभा आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभ बने। वर्षों की कानूनी लड़ाई में ब्रिटिश दमन ने उनकी संपत्ति छीन ली थी, पशुधन नष्ट हो गया था, उनकी आर्थिक स्थिति भी टूट चली थी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। इसी विपन्न अवस्था में उन्होंने 20 मई सन 1929 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई. 10:40 हो चुके हैं. ये समय है न्यूज हेडलाइंस का. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप और पश्चिम एशिया के 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन पहुंचेंगे. उनके कार्यक्रम के अनुसार वो स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर में 2 दिन रहेंगे. स्वीडन की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अपने समक्ष उल्फ क्रिस्टरसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है. आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी. इस दिन का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है. इटली ओपन टेनिस में संसार के नंबर 1 खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं. उन्होंने कल सेमीफाइनल में रूस के दानिल मेदवेदेव को 6-2, 5-7, 6-4 से हराया. फाइनल में आज सिनर का मुकाबला कैस्पर रूड से होगा. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मांडरे को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था. आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस. सुनते रहिए एफएम रेनबो.
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स.
1: वेलकम बैक मुंबई. 10:26 हो चुके हैं और आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम होगा नमस्ते भारत. और संडे का दिन, छुट्टी का दिन, यानी मौज मस्ती का दिन. और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान. और मैं तो वैसे ही अक्सर मस्ती के मूड में ही रहता हूँ. तो चलिए एक लेसन आपको सिखा दें. दिल खोल कर पूरे प्यार से, पूरी मोहब्बत के साथ सीखिएगा. कुछ सिखाना चाहता है रविन आपको. बहुत ही खूबसूरत गीत लता जी और रफी साहब की आवाजें, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए.
2: छोड़ दो मुझे.
3: क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती?
2: नहीं करती.
3: क्यों नहीं करती?
2: हे दयाना, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती.
3: क्या तुमको प्यार करना नहीं आता?
2: नहीं आता.
3: नहीं?
2: हाँ हाँ, नहीं.
3: तेरी कसम. प्यार सिखा दूं?
2: ठीक है.

जी हाँ दोस्तों, 10:12 और 40 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। और आज हमारा टाइटल है मेरा दिल मेरी बातें, यानी हम युवाओं के किसी भी मुद्दे को लेकर इस स्लॉट में चर्चा करते हैं। वैसे दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इंसान के दिल में क्या है ये जानना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है, लेकिन मेरे दिल में आज जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो अक्सर सुबह से लेकर शाम तक भागती रहती है, लेट नाइट्स होता है, सुबह जल्दी उठते हैं, काम का प्रेशर, जिंदगी का प्रेशर, ज़्यादा पैसा कमाने की चिंता, अच्छा करियर बनाने का एक दबाव हमेशा रहता है, और दुनिया भर के मसले, ये देना है, वो लेना है, EMI भरनी है, लोन ले रखा है। तो इस सारी वजह से हमारे देश के जो युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो हाइपर टेंशन का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, और डेटास बताते हैं कि जो ये हाइपर टेंशन का जो पंगा है, ये पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा हो रहा है। हाइपरटेंशन यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर। और इसके जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण होते हैं, वो होते हैं जैसे सर भारी होना, सर दर्द होना, चक्कर आना, सांस फूलना या सीने में किसी तरह का दर्द होना, और ये सब हाई ब्लड प्रेशर के जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, और ये आज हमारे युवाओं में देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इसके बारे में, यानी हाइपरटेंशन के बारे में, जो हमारे युवाओं की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ास तौर से पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या राय है, तो WhatsApp के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सुनते रहिए FM Rainbow।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जी हाँ दोस्तों, 10:28 और 28 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरचे और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर। और बात कर रहे थे हाइपरटेंशन की। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे युवा यानी हमारे देश की जो नई पीढ़ी है वो हाइपरटेंशन का बहुत ज़्यादा शिकार हो रही है और आज इसके बारे में बात करना बनता है क्योंकि आज है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे और ये हर साल 17 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2005 से। दोस्तों, इसे मनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि लोग ब्लड प्रेशर की इस बीमारी को समझें और ख़ुद को इससे बचा सकें। पहले अक्सर ऐसा होता था कि जब ज़्यादा उम्र हो जाती थी, लोगों की एज ज़्यादा हो जाती थी, तभी लोग इस बीमारी का शिकार हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे युवा इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। बहुत कम उम्र के लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं और वजह एकदम साफ है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जी हाँ, हम सभी इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, यानी हेल्दी तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल को ना अपनाना और उल्टी पुल्टी चीज़ें करते रहना। एनीवे, इसी के बारे में बात करेंगे और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए कह सकते हैं। अगला गीत बहुत ही प्यारा गीत सुनिएगा, महसूस कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, 10:38 और 40 सेकेंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और आपका अपना चैनल FM रेनबो। तो बात कर रहे थे कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल की। दोस्तों, एक समय था जब हम लोग रात को जल्दी सोया करते थे और सुबह जल्दी उठा करते थे, लेकिन अब तो देर रात तक जागना, वो भी बिना किसी वजह के, बिना किसी काम के, बस देर रात तक जाग रहे हैं, यूं ही जाग रहे हैं। और सुबह भी देर से उठना एक ट्रेंड हो गया है, एक फैशन सा बन गया है, यानी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया है कि देर से सोएंगे और देर से उठेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ समय पहले जब मैं अपने गाँव गया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ भी लोग देर तक जागने लगे हैं, और जबकि वहाँ पर लोग अक्सर, यानी गाँव में अक्सर लोग जल्दी सोया करते थे, लेकिन अब वहाँ पर भी लोग देर तक जागते हैं और देर तक टीवी देखते रहते हैं, या उनके हाथों में होता है प्यारा सा मोबाइल। अगर आपको कुछ लगता है तो आप भी व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे कह सकते हैं, और डॉक्टर्स यानी बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि अगर आपको हाइपरटेंशन से बचना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे जल्दी सोना, जल्दी उठना, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नींद को ठीक तरह से लेना, नींद को पूरी करना, डेली थोड़ी देर एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस से खुद को दूर रखना, और पौष्टिक आहार लेना, यानी जंक फूड ना खाना, स्पाइसी फूड ना खाना। अब आप बहुत आराम से कह देंगे कि ये सब तो हम जानते हैं, हमें सारा पता है, ये सारा ज्ञान तो हमारे पास पहले से ही है, इसके लिए भला किसी डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता है ना बापू, सब करना पड़ता है, एफर्ट्स करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्लान करना पड़ता है। और फिलहाल मेरा प्लान है आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनवाने का, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, 10:50 और 40 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत, आपका अपना चैनल FM रेनबो, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। संडे का दिन, मस्ती का दिन, छुट्टी का दिन, और हमारे बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ हैं, और प्रकाश शिंदे ने, शुभ लक्ष्मी मस्कार ने, और दोस्तों प्रमोद चिंचोलकर जी ने, पंकज माहौड़ ने और विजेंद्र घाटोल ने, इन सभी लोगों ने संदेश भेजा है कि जी हाँ, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और खाने पीने का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि बीपी जैसी बीमारी से बचना बहुत ज़रूरी है और इसी से धीरे धीरे और बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। और फिरोज सिंगनपुरिया जी ने भी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में लिखा है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों मेरे घर के पास एक गार्डन है, मैं अक्सर उस गार्डन में वॉक करने जाता हूं, और जब मैं वहां पर देखता हूं कि टीनेजर्स या यंगस्टर्स जो हमारे युवा हैं उस गार्डन में बैठे रहते हैं, वो ना ही वॉक करते हैं, ना ही कोई एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि उन सब के हाथों में मोबाइल होते हैं, वो बेंचेस पर बैठ जाते हैं और घंटों घंटों सिर्फ मोबाइल देखते रहते हैं, और मोबाइल में ऐसे घुसे रहते हैं जैसे मोबाइल ही उनकी ज़िंदगी बन गया है। और आप सोच सकते हैं कि ये जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, ये नस्लें हैं, फ्यूचर में इनका क्या होगा अगर ये इतना ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी

हाइपरटेंशन का इंसान शिकार हो सकता है। एनीवे, ज्ञान देना रविन का काम था। अब इस ज्ञान का कितना इस्तेमाल आप करना चाहते हैं ये आपकी छूट है, आपकी चॉइस है। एनीवे, हैव ए नाइस संडे, लव यू ऑल। और इसी के साथ मैं रविन आपसे विदा लेता हूँ। दो प्यारे प्यारे गाने बैक टू बैक आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत गीत है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप ही हमारे चंद्रमा हैं, आप ही हमारे सूरज हैं।

अभी आप सुनेंगे इस घंटे के मुख्य समाचार। कुछ ही देर में पोस्ट बॉक्स 111 सुनेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में भारत के प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस संशोधन से मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित से संशोधित कर दी जाएगी। अभी आप सुनेंगे पोस्ट बॉक्स 111 कार्यक्रम।

0: Swahili FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल सीधा सीधा प्रसारण। आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी के डीआरएम पर भी सुन सकते हैं, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पे भी सुन सकते हैं जहां कहीं भी होंगे।

0: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, हम सब जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम मन की बात का फॉलो अप प्रोग्राम है, मन की बात का विस्तार है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पवन ऊर्जा का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, भारत की बदलती और मजबूत होती स्थिति क्या है और क्या नए बदलाव हो सकते हैं, उसका उल्लेख किया है। आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें पवन ऊर्जा का उल्लेख है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज मैं एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहता हूं जो अदृश्य है, लेकिन जिसके बिना हमारा जीवन एक पल भी न चले। यही ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है। यह हमारी पवन शक्ति है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, वायुर्वा इति व्यष्टि ही वायुर्वै समष्टि है। अर्थात वायु सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है, यह समष्टि की शक्ति है। साथियों, आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत का

0: अब विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले एक साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है। साथियों, आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में चौथे स्थान पर है। यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है, यह हमारे युवाओं का परिश्रम है, यह देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। साथियों, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश के अनेक राज्य इस सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे हैं। गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा जैसे क्षेत्र जहां पहले सिर्फ रेगिस्तान नजर आता था, आज वहां बड़े रिन्यूअल एनर्जी पार्क बन रहे हैं। इसका लाभ युवाओं को मिल रहा है, नए अवसर बन रहे हैं, नई स्किल विकसित हो रही है, रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथियों, भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा जरूरी है। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है। इसमें हम सब की भूमिका है। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी अपनानी है। देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव आता है।
1: तो इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए पवन ऊर्जा को थोड़ा और समझते हैं, इस बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे विशेषज्ञों को। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप वैज्ञानिक हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में, साथ ही आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक भी हैं। डॉक्टर प्रबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद। धन्यवाद नीलम
1: जी। और साथ ही हमारे हैं यहाँ पर अतिथि ओम तनेजा जी, आप उद्यमी हैं और आपका अनुभव जो है पवन ऊर्जा क्षेत्र में है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय रूप से आप शामिल रहे हैं और भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम जी।
3: धन्यवाद।
1: जब हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं, जिसमें से कुछ तकनीकी प्रश्न हैं, कुछ व्यवहार से जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत के लिए हम यही जानना चाहेंगे कि हवा से तो हम सबका रिश्ता है, लेकिन हम इसे ऊर्जा क्यों कहते हैं? पवन ऊर्जा का सही अर्थ क्या है? और ये मैं जानना चाहती हूँ प्रबीर जी आपसे।
2: ऊर्जा हम उसी को कहते हैं जो हमारे लिए कोई भी काम को सहज कर दे या कोई भी काम को करने में हमारा सहायता करे
1: जी।
2: तो उसमें पवन ऊर्जा एक प्रमुख ऊर्जा है और इनफैक्ट ये बहुत ही पुराने है। अगर हम मानव के इतिहास में देखें कि कौन सा ऊर्जा को हम पहले इस्तेमाल करना सीखे, तो पवन उसमें से अग्रणी है। पुराने जमाने में पहले पवन के माध्यम से हमारा जहाज चला करते थे, पवन के माध्यम से पवन चक्की चलाया करते थे जिसमें उन्होंने ग्राइंडिंग करना शुरू किया। बट अभी मॉडर्न एज में हमने वही पवन को इस्तेमाल करके उससे हम बिजली बनाते हैं। और बिजली ऊर्जा हमारा क्या सहायता करता है ये शायद हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर घर में प्रतिक्षण हम बिजली का उपयोग करते हैं
1: जी।
2: तो वही बिजली हम पवन से बनाते हैं, तो वही ऊर्जा फिर हमारा प्रति काम में हमें सहायता देती है
1: जी। इसलिए हम पवन की जो शक्ति है उसको पवन ऊर्जा कहते हैं जी। हमने अक्सर वीराने में विशाल पंखे घूमते हुए देखे हैं और कई बार मन में सवाल आता है कि ये कैसे काम करते हैं, यहाँ एकदम वीराने में सुनसान जगह में इनकी देखरेख कैसे हो रही है, ये यहाँ पर क्यों है? तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ओम जी, जो शुरुआत है पवन ऊर्जा की वो कैसे होती है, जिन्हें हम टर्बाइन कहते हैं या विशाल पंखे कहते हैं, ये कैसे काम करते हैं?
3: अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कि ये पवन ऊर्जा कब से कहां से शुरू हुई है। ये असल में 1960 के दशक से ये कुछ हमारे साइंटिस्ट थे CSIR के और नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरीज के, जिन्होंने शोध करके हमारे यहाँ पवन ऊर्जा कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसके ऊपर कार्य किया जाए, उसमें किया था। तो पवन संसाधन जो है उसके लिए हमारी एक साइंटिस्ट थी अन्ना मनी जी, जिन्होंने बहुत कार्य करके और पूरा उसका जो है एक संकलन किया है और उस संकलन को उन्होंने 5-6 वॉल्यूम्स में डाल के और जो आज के दिन हमारे लिए एक किस्म से बाइबल जिसे कहते हैं वो है। पर उसके बाद उसके ऊपर बहुत काम हुए हैं, वो अलग चीज है, बट एक शुरुआत का जो था वो उनका।

0: हमारे यहाँ गुजरात में सबसे पहला जो है 1985 में एक पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया, और समय के साथ सरकार ने इसमें कई बदलाव किए। हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना था जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अंदर था। उसके बाद उसका नाम बदल के हमने एमिनियस किया, और उसके बाद आज के दिन वो MNRE कहलाता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उसका नाम है। ये 2006 से इसका नाम ये प्रचलित है। अब भारत में इस नवीनकरणीय ऊर्जा, जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, इसका विकास बहुत तेजी से हुआ है
1: जी।
0: पवन ऊर्जा का जनरली फॉसिल फ्यूल या जिसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कोल हुआ
1: जी।
0: या और इस तरह के जो उनके साथ मिलते जुलते हैं, इनके आयात और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का एक प्रभावी समाधान माना गया है। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ, गैर प्रदूषणकारी और सस्ती ऊर्जा स्रोत है जो ईंधन और परिवहन पर निर्भरता को कम करती है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या हरित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देती है। इसमें एक खास बात है कि हमें इसके अंदर पानी का उपयोग भी बहुत कम करना पड़ता है। पानी का उपयोग जो है खाली कुछ एक कार्यों के लिए ही किया जाता है, सफाई वगैरह के लिए। अब इसका जो नीतिगत विकास हुआ है वो 1993 में हमारे मंत्रालय ने एक फिक्स टैरिफ बनाया था 2.25 रुपए का, जिसमें प्रति वर्ष 5% वृद्धि का प्रावधान था, और उसके साथ साथ ही एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, जो एक ऐसा था कि आप जो भी कमाई करते हैं उसके अंदर जो उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता था वो 80% तक का था उस समय, और उसमें जो है पहले 100% था, फिर उसको 80% कर दिया गया था, और जिसके लिए खुदरा निवेशकों को, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको आकर्षित किया। पवन ऊर्जा जनरेशन के लिए या उसके उत्पादन के लिए हम ये विंड टर्बाइन्स का इस्तेमाल करते हैं
1: जी।
0: जो हमारे उस जगह पर जहां हमें हमारी स्टडी या हमारे एक किस्म से उसका अध्ययन किया जाता है
1: जी,
0: जो ये बताता है कि किस जगह पे हमें हवा का, पवन का ज्यादा जोर मिलेगा
1: जी,
0: जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न कर पाए
1: जी।
0: तो हमने एक स्टडी करते हैं, उस स्टडी के हिसाब से जगह ढूंढते हैं कि किस जगह पर हमें इसको लगाना
1: जी।
0: अब आप जब लगाना चाहते हैं तो उसके लिए विंड टर्बाइन्स जो बनाते हैं उनसे संपर्क करते हैं, और उनके हिसाब से कि हमें किस जगह पर कितना जनरेशन मिलेगा, इसका अध्ययन पूरा उसका किया जाता है, जिसके लिए एक अच्छी खासी साइंटिफिक स्टडी
1: जी। तो इस बारे में हम और भी जानेंगे। अब ये बताइए कि आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना सुनवाना चाहते हैं?
0: आई थिंक मेरे हिसाब से हवा के साथ साथ
1: जी, हम पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है, यही गाना हम सुनवा रहे हैं।
2: हवा के साथ साथ,
3: अरे रे रे,
2: घटा के संग संग,
3: संभलना,
2: हवा के साथ साथ,

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में जो बता रहे हैं पवन ऊर्जा कैसे हासिल होती है, इसका महत्व क्या है और बदलते दौर में किस प्रकार से हम अपने काम करने के तरीकों को और भी अच्छा बना रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप वैज्ञानिक हैं, पवन ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर भी हैं और साथ हैं ओम तनेजा जी जो उद्यमी हैं और पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्य करते रहे हैं। तो प्रबीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की तो हमने अक्सर बड़ी बड़ी टर्बाइन्स को देखा है। मन में सवाल आता है कि वीराने में ये खड़ी हैं, कैसे काम करती हैं, एक पूरा तंत्र क्या है, हम चाहेंगे कि आप हमें इस बारे में बताएं।
1: धन्यवाद नीलिमा जी, इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूंगा।
0: जी,
1: शायद आप अपने बचपन में कागज से छोटे छोटे पंखे बना के उसको कहीं पे जहाँ पे हवा चलता है वहाँ पे रखे होंगे तो वो घूमते हुए नजर आए होंगे।
0: जी,
1: इनफैक्ट मैंने अपने बचपन में बरगद की जो पत्ते होते हैं उसको दोनों साइड से एक विशेष भाव से काट के उसके अंदर एक दिन आप उसको
0: तीली लगा के रखिए हैं।
1: तो ये अपने आप घूमने लगता है जब आपका हवा चलता है। तो इसे पीछे का जो विज्ञान है वो ये है, उसको एरोडायनामिक्स बोलते हैं इंग्लिश में।
0: जी,
1: जो आपने अक्सर इवन हवाई जहाज का पंखों में वो देखा होगा वो शेप, तो उसी शेप में ये जो विंड टर्बाइन्स होते हैं उसको हम ब्लेड बोलते हैं, जो पंखा आप बोलते हैं, उन्होंने तीन पंखे होते हैं उसमें, ये तीन ब्लेड उसी संरचना के साथ बनते हैं जो हवाई जहाज के पंखे होते हैं। तो ये कि उसको एक विशेष एरोडायनामिक शेप देता है जिसके वजह से जब हवा चलता है वो ये हवा का जो शक्ति है वो इसको घुमाने लग जाते हैं।
0: जी,
1: और कभी भी बिजली पैदा करने के लिए हमें जो जनरेटर है उसी जनरेटर के अंदर जो स्टार्टर है या रोटर है उसी को घुमाने के लिए आपको शक्ति चाहिए। वो पंखा जब घूमता है तो वही घुमावट का जो शक्ति है वो जनरेटर में जाता है और जनरेटर से बिजली पैदा होता है, फिर वही बिजली को फिर हम ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर वही शक्ति हमारा घर पे बिजली बन के हमारा जो आमतौर के जिंदगी में हमारा डेली लाइफ में हमारे लिए, चाहे आपका लाइट हो, घर का पंखा हो, फ्रिज हो, टीवी हो,
0: जी
1: वो हर जगह पे काम करता है।
0: जी, तो ये जो पवन चक्कियां हैं अल्टीमेटली ये बिजली आपूर्ति हमारे घरों में कर रही हैं और इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी टीम काम करती है और मंत्रालय जो है इससे जुड़ी हुई नीतियों को देखता है। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर टर्बाइन्स जो हैं, पवन चक्कियां जो हैं, इसमें प्राइवेट क्षेत्र काम करना चाहे तो किस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं, क्या नीतियां हैं?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है और इनफैक्ट आज अनडेट प्राइवेट सेक्टर ही इसको ड्राइव करता है।
0: जी,
1: शुरुआती दिनों में जैसे तनेजा जी ने भी बताया, हमारा बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम जहाँ पे गवर्नमेंट से सहायता दी जाती है वो तकनीकी रूप से हो या आर्थिक सहायता के रूप से हो, तो मंत्रालय के जो शुरुआती दिनों थे, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, उस समय पहले जब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही नया था तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत थी कि ये काम करेगा नहीं करेगा, वेदर इट विल बी ए प्रॉफिटेबल बिजनेस और नॉट, तो उसी समय मंत्रालय उसको आर्थिक सहायता भी देता था, फिर कुछ नीतिगत सहायता मिला, उसको हम जीबीआई कहते हैं, जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव। जैसे आप एक जेनरेटर है तो जितना यूनिट आप ग्रिड को देंगे हर यूनिट के लिए आपको कुछ ना कुछ सहायता मिलेगा, बट ये सब सहायता 2017 के बाद बंद हो चुके हैं क्योंकि तब तक विंड एनर्जी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में उभर चुका था। तो 2017 के बाद आज के डेट पे जो नीति है गवर्नमेंट का उसको हम बिडिंग रेजिम कहते हैं।
0: जी,
1: मतलब इट इज ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। जितना हमें बिजली चाहिए होता है मंत्रालय के तरफ से हमारा चार, हम उनको रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहते हैं, जिसमें हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, NTPC है, NHPC है, SJVN है, तो वो अपने प्रतिवर्ष बिडिंग लेके आते हैं कि उनको कितना मेगावाट का या कितना गीगावाट का पवन ऊर्जा चाहिए। देन जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो हमें लो टैरिफ सबसे ऑफर करता है
0: जी
1: वो प्रोजेक्ट उन्हीं को ही मिलता है। तो इसके कारण होता क्या है कि हमें बिजली सस्ते से सस्ते में मिलता है।
0: जी,
1: जो हमारे डिस्कॉम को, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो स्टेट्स में काम करते हैं, और ये बिजली अल्टीमेटली उन्हीं को खरीदना पड़ता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे घर पे उसको उपलब्ध कराते हैं।
0: तो इसके लिए बिडिंग होती है।
1: बिल्कुल
0: जी। और मैं जानना चाहूंगी कि जगह का चुनाव कैसे किया जाता है, कि कहाँ पर टर्बाइन्स जो हैं वो लगेंगी या इससे जुड़ी हुई रिसर्च कहाँ पर की जाएगी, तो उस जगह का चुनाव कैसे करते हैं?
1: हमें मंत्रालय को इसमें तकनीक सहायता देने के लिए हमारा एक सेंटर है जिसको हम पहले, इसका नाम था सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, CWET के नाम से शुरू

0: हुआ था सन 2000 में, अभी उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो चेन्नई में स्थित है
1: जी।
0: तो इसका जितने भी टेक्निकल काम है या मंत्रालय को जो टेक्निकल सहायता है वो उसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से होता है। और कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा का शक्ति ज्यादा है, जो वहाँ पे हमें पवन ऊर्जा या पवन चक्की बिठाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं, उसको पता करने के लिए हम उसको बोलते हैं रिसोर्स असेसमेंट, जो कि मिनिमम एक साल का काम होता है। तो वहाँ पे हम मास्ट लगाते हैं, विंड मास्ट, जिसमें बहुत सारे सेंसर्स लगा हुआ होते हैं, जैसे आपका एनीमोमीटर होता है विंड का स्पीड को मेजर करने के लिए, विंड वेन होते हैं जो विंड का डायरेक्शन को मेजर करता है। और जब भी कोई पवन चक्की का प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें जो दूसरा एटमोस्फेरिक पैरामीटर्स है, जैसे कि आपका रेन गेज है, प्रेशर गेज है, क्योंकि एयर का कितना डेंसिटी है वो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, तो ये सबका मेजरमेंट होता है एक साल तक
1: जी।
0: फिर उसी बेसिस में हमें पता लगता है कि इस साइट पे अगर हम पवन चक्की लगाते हैं तो हमें कितना उत्पादन होगा बिजली का
1: जी।
0: और उसी हिसाब से प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा कि नहीं होगा। बट ये तो मैंने बहुत ही टेक्निकल रूप से समझाने की कोशिश किया। अगर एक लेमैन लैंग्वेज में भी हम पता कर सकते हैं, जैसे ये कहाँ पे मास लगाएंगे, उससे पहले हम देख के भी बता सकते हैं कि कोई जगह यहाँ पे पवन है या नहीं है।
1: तो यानी जहाँ हवा का बहाव बहुत तेज होता है,
0: तेज होता
1: जहां
0: है,
1: हम महसूस कर पाए कि अक्सर यहाँ हवा चलती है और कोई ऊंचा जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो, आसपास खुली जगह हो, तो उस हिसाब से हम जगह का चुनाव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे मास्ट लगाने से पहले हमारे इंजीनियर्स वहां पे जब जगह का भ्रमण करते हैं वो इसी चीज को ध्यान में रखते हैं, इवन पेड़ का भी शेप को देखते हैं
1: जी।
0: जहां पे कंटिन्यूअस विंड होता है आप वहां पे देखेंगे जो पेड़ होते हैं
1: वो
0: एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुका हुआ रहते हैं, तो वो एक प्राइमरी साइन है
1: जी।
0: किसी भी
1: हवा की दिशा पता चलती है कि किस दिशा में प्रवाह ज्यादा होता है, तो फिर वो चक्कियों को उसी दिशा में लगाया जाता है जी। बहुत अच्छे से हमें एक छवि आपने दी है, बचपन से लेकर वैज्ञानिकों तक आप लेकर गए। अब ये बताएं कि कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं।
0: तो हम पवन की बातें करते हैं तो हमारा पवन का उत्पादन सबसे ज्यादा सावन के महीने में ही होता है
1: जी।
0: ये शायद आपके श्रोताओं को जानकर एक अच्छी जानकारी होगी कि पवन हमारा जो चार महीना होता है
1: जी
0: सावन का, उसी समय सबसे तेज चलते हैं और सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं।
1: वाह,
0: तो सावन का महीना
1: जी। सावन का महीना,
2: सावन का महीना पवन करे शोर,

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत है। और अब हम ये समझ गए हैं कि सावन के महीने में पवन करे शोर, तो ये जो शोर है पवन का, ये ऊर्जा उत्पादन के बहुत काम आता है और हमारे विशेषज्ञों ने हमें ये आज बताया है, क्योंकि कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की। और कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक हैं, और साथ ही ओम तनेजा जी हैं जो कि उद्यमी हैं, पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं। ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी प्रबीर जी ने बताया कि ये आज तो एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हम मान सकते हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तब आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप पवन ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े, और उस वक्त क्या चैलेंजेस आपके सामने थे?
1: उस समय हम लोगों ने ये सोचा कि ग्रीन एनर्जी की तरफ,
0: जी,
1: हरित एनर्जी की तरफ जाना जरूरी है, क्योंकि जिस संस्थान में मैं कार्यरत था वहाँ थर्मल पावर प्लांट जो कोयले से चलते थे, उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पानी से चलते थे, इन पर कार्य हो रहा था। तो हमारे एक निदेशक मंडल ने कहा कि हम लोगों को पवन ऊर्जा या सोलर ऊर्जा पे भी कार्य करना चाहिए।
0: जी।
1: तो उस समय पवन ऊर्जा पे हमने कार्य करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया, उसमें किया, और ये देखा कि पवन ऊर्जा एक समय तक, लगभग जिसे कह सकते हैं कि 5 या 6 वर्ष के अंदर, हमें जो उस समय इसके टैरिफ थे, उस समय चीजें थी, 5 से 6 वर्ष के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने किया हुआ है, उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो देखिए, कोई भी एक उद्यमी रहता है, उसको अपना प्रॉफिट और ये भी देखना होता है। तो ये एक ऐसा उस समय उद्यम था जिसमें हमें लगा कि हम इसके अंदर कार्य करके दो तरह के काम कर रहे हैं। एक तो हम जो है जिस जगह अपना विंडमिल या ये लगा रहे हैं,
0: जी,
1: उस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा होगा, जो हमारा एक किस्म से CSR एक्टिविटीज हो जाती है।
0: जी।
1: उसी के साथ साथ ही हमें जो है और पवन ऊर्जा का जो है लाभ भी मिलेगा, और हम जो है इसको, और इसी विषय पे, इसी के प्रेरणा को साथ में रखते हुए हमने पवन ऊर्जा के अंदर कार्य शुरू किया।
0: जी।
1: और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ 60-70 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाए। पावर प्रोजेक्ट लगाने में हमें थोड़ा समय लगा,
0: जी,
1: पर जो मंत्रालय या और जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनकी सहायता से हमने बहुत जल्दी ही इस कार्य को प्राप्त कर लिया। और उस समय हमें जो है विभिन्न सरकारों के, उनका भी अच्छा हमें साथ मिला। मंत्रालय की जो उस समय की योजनाएं थी, जो एक किस्म से हम लोगों को फैसिलिटी थी, बेनिफिट्स थे, उन सब का भी हमें जो है भरपूर उपयोग किया, और हमने पाया कि हम जो है इस चीज के ऊपर अच्छा कार्य कर सकते और कर रहे हैं, और शायद साथ साथ हम देश में जो है अपने प्रदूषण की समस्या का भी एक निदान ढूंढ रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, जहां हम अभी कार्बन उत्सर्जन को लगातार कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, दूसरा जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम हो, हम कम से कम आयात करें, ऐसे में हमारे पास जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिसे अक्षय ऊर्जा हम कहते हैं, कैसी ऊर्जा जिसका कभी क्षय नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगी, उस पर हमारी डिपेंडेंसी रहे, ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद जितना हम समझ पा रहे हैं कि पवन ऊर्जा एक ऐसी चीज है जहां लगातार आपकी उपस्थिति की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो आप देख सकते हैं, वो मैनेज करना है, ऐसे में अगर कोई नया उद्यमी जुड़ना चाहे तो वो किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर सकता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे?
1: जैसा डॉक्टर प्रबीर

0: ने बताया कि आजकल जो है
1: जी
0: बिडिंग का
1: जी
0: एक तरीका अपनाया जा रहा है जिससे प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो उद्यमी हैं, वो उसमें भाग लेते हैं
1: जी।
0: इससे पहले मैं आपको बताऊं, लगभग 70% तक जो इन्वेस्टमेंट हुई है एक छोटे उद्यमियों की रही है। इवन उसमें कुछ जो है ना इंडिविजुअल भी है, अकेले भी हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा कि कई कलाकारों ने अपना ये जो है इस क्षेत्र के अंदर अपना
1: इन्वेस्टमेंट
0: किया है, और वो जिसका 25 वर्ष तक जो है उनको फायदा हो रहा है, उनके अपने इनकम टैक्स में फायदा हुआ है जो स्कीम वगैरह थी
1: जी।
0: और इसकी वजह से जो आसपास के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र या जिन जगह पे लगा, वहाँ भी बहुत ज्यादा अच्छा उत्थान हुआ है। बहुत अच्छे उस जगह का प्रोत्साहन मिला है, वहाँ अच्छे खासे जो है लोगों का, जिसे बोलते हैं नौकरियां या उनका कार्य करने का क्षेत्र बना है
1: जी, उन्हें रोजगार मिलता
0: रोजगार
1: है, इसकी वजह से
0: रहा है। पवन ऊर्जा जहाँ कहीं भी लगती है, आपको मैं बताऊं, चारों तरफ से मेन रोड से हर एक पवन चक्की के ऊपर चलने का एक रास्ता बनाया जाता है
1: जी।
0: और जो है उस रास्ते में लगभग कई बार वो रास्ता एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर का भी हो जाता है, तो रास्ते में कई उनको उद्यम जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको कुछ ना कुछ काम में मिल जाता है
1: जी।
0: उसके आसपास का क्षेत्र अच्छा डेवलप हो जाता है, अच्छा उसके अंदर उत्थान हो जाता है
1: जी। हम डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जिन्हें बोलते हैं, जो किसी एक मुख्य काम से जुड़ी रहती हैं परोक्ष रूप से, यानी पवन ऊर्जा की वजह से जहां टर्बाइन्स लगेगी वहां पहुंचने का रास्ता कोई तैयार करेगा, रास्ते में खाने पीने का सामान भी मिलेगा, फिर उस रास्ते पर वाहन भी आए जाएंगे, तो इसकी वजह से, परिवहन व्यवस्था की वजह से कई लोग जो हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, ये आप कह रहे हैं जी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी ये है हमारे लिए। मैं अब प्रवीर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, पवन ऊर्जा, आपने बताया कि पवन चक्कियां चलती हैं और उससे हम बिजली उत्पादन करते हैं, लेकिन क्या इन पवन चक्कियों को कभी पवन की वजह से ही नुकसान होता है? कभी ऐसा होता है कि आंधी तूफान में पवन चक्कियां अपने स्थान से उखड़ गई या उनके ब्लेड्स प्रभावित हुए और उसके बाद बिजली उत्पादन कम हो गया, क्या ऐसा भी कभी होता है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा लगता है बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पवन चक्कियां हैं वो ऐसे ही डिजाइन होता है ताकि वो जो आंधी तूफान को भी झेल जाए
1: जी।
2: तो आंधी तूफान में भी वो गिरे ना, बट हाँ बिजली उत्पादन थोड़ी देर के लिए शायद बंद हो सकता है
1: जी।
2: क्योंकि जो पवन चक्की काम करता है उसमें ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है कि जब पवन एक गति से आगे हो
1: जी
2: तो उसको वो बंद कर देता है ताकि वो सुरक्षित रहे, गिरे ना
1: जी।
2: तो फिर जैसे पवन आंधी तूफान चला गया तो फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है
1: जी।
2: तो थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है, बट अभी तक आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारा चक्रवात आया था अरबियन सी में, तो उसमें भी हमारा एक भी पवन चक्की नहीं गिरा था
1: जी।
2: तो वो ऑलरेडी डिजाइन में इनबिल्ट है। बट हैविंग सेड सो, ये जब मैं बोलता हूँ तो आपको ये भी शायद ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे भारत जैसा देश है जहाँ पे हमारा जो पवन है उसका गति इतना भी ज्यादा नहीं है जितना यूरोप में होता है, क्योंकि हम जो इक्वेटोरियल कंट्रीज होते हैं हमारा यहाँ पे पवन जो है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज आपने सुना होगा
1: जी,
2: कि दिन में जो भूमि है वो जल्दी गर्म हो जाता है और हमारा जो समुद्र है वो थोड़ा ठंडा रहता है
1: जी।
2: जैसे कि हम सबको पता है कि भारत जो है हमारा इक्वेटोरियल रीजन में हम रहते हैं, ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ट्रॉपिकल कंट्री में होता क्या है कि हमारा पवन का गति इतना ज्यादा नहीं होता है, हमें सिर्फ सावन के महीने में जो हमारा मानसून होता है उसी समय ही हमें पवन का गति ज्यादा रहता है
1: जी।
2: बाकी सब महीनों में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण ही हमारा हवा तेज होता है, इसीलिए हमारे जो ज्यादातर पवन की संभावनाएं हैं वो कोस्टल स्टेट्स में ही है। तो ज्यादातर आज के डेट पे जो भारत में लगे हुए हैं पवन ऊर्जा की प्रोजेक्ट्स वो 8 ही स्टेट में ही सीमित है
1: जी।
2: अभी एक दो स्टेट में और अभी काम चल रहा है, जैसे कि उड़ीसा, तो वहां पे भी शायद अगले 1-2 साल में आपको दिखेगा कि वहां पे भी लगा हुआ है
1: जी।
2: लग जाएगा।
1: ये कौन से 8 स्टेट हैं?
2: ये है हमारा सबसे आगे तो हमारा गुजरात है आज के डेट पे, उसके पीछे है तमिलनाडु, उसके पीछे है महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और देन मध्य प्रदेश
1: जी।
2: तो यही सब स्टेट्स है जहाँ पे ऑलरेडी अभी पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। तो जो हम बात कर रहे थे साइक्लोन, तो हमारा इंडिया जैसे कंट्री में क्या है कि पवन जो है ये मॉडरेट है, ऐसा नहीं है कि कम है, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पे जो एवरेज विंड स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड से लेके 7-8 मीटर पर सेकेंड तक होता है, तो इसको हम एक्चुअली मॉडरेट मानते हैं। तो ये विंड में हम टेक्निकली बोलते हैं कि क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 साइड्स है, तो जो क्लास 1 होता है वो सबसे बेहतर साइड्स होते हैं जहाँ पे पवन की गति बहुत ज्यादा है, और क्लास 3 साइड्स होते हैं जहाँ पे मॉडरेट है। तो हमारा जो विंड के साइड से वो मॉडरेट है, एट द सेम

0: टाइम हमें साइक्लोन भी देखना पड़ता है
1: जी।
0: तो हमारे जो पवन चक्कियों को उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है, तो उसका परिणाम होता क्या है कि हमें थोड़ी सी वो जो डिजाइन है उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा
1: जी।
0: बोलने का मतलब कि हमारा जो उसका टावर हो, गियर बॉक्स हो, ब्लेड हो, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं पवन चक्की का, वो सब एकदम मजबूत बननी चाहिए ताकि वो साइक्लोन को देख पाए, वो साइक्लोन में गिरे ना।
1: ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, क्या इसके लिए हम मशीनरी आयात करते हैं या ये भारत में निर्मित है सर?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे बहुत खुशी होगी इस बात को बताते हुए आपके श्रोताओं को कि भारत शायद विश्व में 5 या 6वां कंट्री है जहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट इंडिया में ही बनते हैं
1: जी।
0: और इनफैक्ट हम आयात नहीं करते, हम निर्यात करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो मेरे पास डाटा है, हम 12,000 करोड़ से ज्यादा कि पवन चक्की या पवन चक्की का कंपोनेंट भारत से बना के अलग कंट्री को निर्यात करते हैं, और जिसमें यूरोप भी है, यूएसए भी है, हम उस कंट्री को निर्यात करते हैं
1: जी।
0: बट ऐसा नहीं कि हम आयात नहीं करते, तो इसको बनाने के लिए जो कुछ कंपोनेंट या इनपुट मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स है, तो वो सब हम कुछ आयात भी करते हैं
1: जी। तो एक तरह का संतुलन इसमें बना हुआ है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है जी। मैं यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम सौर ऊर्जा से अगर तुलना करें तो सौर ऊर्जा के लिए हम हर किसी को प्रेरित करते हैं कि वो अपने ओर से योगदान करें, और उनके पास जो भी स्थान है, छोटा स्थान भी हो, घर की छत है या खेत है, वहां से वो सौर ऊर्जा जो है उसमें योगदान कर सकते हैं, सोलर पैनल्स वहां लगा सकते हैं। क्या पवन चक्की के लिए भी ऐसा कुछ संभव है कि छोटे स्तर का कुछ उत्पादन वो कर पाए?
0: बिल्कुल संभव है, बट ये सोलर के तरह जितना सोलर अभी हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा, शायद पवन चक्की का जो छोटा संरचनाएं है वो आपको नहीं मिलता देखने के लिए। उसका बहुत सारे कारण है, बट जो सबसे प्रमुख कारण होगा वो यही है कि कितना कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। जैसे अगर सोलर और विंड, जाहिर सी बात है कि हर कोई तुरंत कंपेयर करेगा कि मेरे पास अगर कुछ पैसा है तो वो पैसा से मैं सोलर लगाऊं या विंड लगाऊं। अगर आप सोलर लगाते हैं तो आपको जेनरेशन ज्यादा होता है, अगर विंड लगाते हैं तो कम होता है, तो आपका नेचुरल जो प्रेफरेंस है वो सोलर की तरह चला जाता है। बट ऐसा नहीं है कि विंड से नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर जो छोटे छोटे विंड टर्बाइन्स भी मार्केट में उपलब्ध है, जो 1 किलोवाट से लेके 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 10 किलोवाट तक, इवन 100 किलोवाट भी आता है, 500 वाट, 200 वाट, ये सब छोटे छोटे पवन चक्के भी मार्केट में उपलब्ध है। बट इसको जब आप सोलर के साथ कंपेयर करेंगे थोड़े महंगे लगेंगे
1: जी।
0: बट अगर मान लो आप रिमोट एरिया में है जहाँ पे आपको मेन ग्रिड नहीं मिलता है या मेन ग्रिड से बिजली जो है कंटिन्यूअसली नहीं मिलता है, तो उस क्षेत्र में अगर आप पवन चक्की, सोलर और बैटरी, ये तीनों को लगा देते हैं तो आपको शायद ग्रिड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएंगे बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में अपने ही घर के लिए, तो ये संभव है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस जगह पे है, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं और आप कितना बड़ा अच्छा सिस्टम घर पे बनाना चाहते हैं
1: जी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन सा गाना आप हमारे श्रोताओं को सुनवा रहे हैं, इसके बाद हमारी बातचीत जो है इसका सिलसिला जारी रहेगा।
0: आपने देश के बारे में पूछा है, पवन के बारे में पूछा है, तो पवन चले पुरबाई
1: जी।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की। हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में हमारे साथ हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं, इससे हमारी जानकारी बढ़ रही है पवन ऊर्जा को लेकर, साथ ही कुछ तकनीकी पहलू भी एकदम आम शब्दों में साधारण भाषा में हम समझ पा रहे हैं। पवन ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप एक साइंटिस्ट भी हैं, और साथ ही ओम तनेजा जी हमारे साथ हैं, उद्यमी हैं और भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से आप जुड़े रहे हैं। ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जो ये संघ है आपका भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ, ये किस प्रकार से काम करता है, क्या भूमिका है इसकी?
1: ये एक संस्था है
0: जी,
1: जो जितने भी हमारे टरबाइन के निर्माता हैं उन सबको आपस में जोड़ के रखे हुए है। समय समय पर जो उनके परेशानियां या चीजें हैं
0: जी,
1: उनको मिनिस्ट्री के साथ या इन सब से साथ मिलके या और जगह पे मिलके, जैसे डिस्कॉम्स हैं, तो इन सब के साथ मिलके एक उसका सोल्यूशन या एक निकालते हैं
0: जी।
1: इसमें जितने भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब भी जुड़े हुए हैं
0: जी।
1: मैं आपको, जैसे प्रवीर जी अभी बता रहे थे, मैं आपको एक चीज और बता दूं, लगभग 70-80% तक चीजें जो हैं कंपोनेंट और ये सब है
0: जी,
1: हम यहाँ भारत में ही निर्माण कर रहे हैं, और उसका स्टैंडर्ड भी जो है ना बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। ताकि जो अभी बता रहे थे कि ज्यादा हवा चल रही है तो सब में कैसे उसको रोका जा सके, तो ये सारी चीजें जो है ना, हम इन सब को अपने मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार हमारे जो एक मशीन्स हैं उनका टेस्टिंग और उनकी जो एक टाइप टेस्ट रहते हैं
0: जी,
1: जो हम बताते हैं कि ये सब चीजें हमारे यहाँ इस्तेमाल हों, और इस वजह से कम उसके अंदर जो है हमारा दुर्घटनाएं हों। मंत्रालय जो है हमारे ऊपर एक नजर रखता है कि हम जो है इस चीज को, ये टरबाइन जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसके पूरा जो है इसकी पूरी हिस्ट्री हमारी मैन्युफैक्चरिंग की और इन सब के ऊपर नजर रखता है
0: जी।
1: और समय समय पर वो उसमें बदलाव भी देता रहता है, ताकि एक विश्व के मानक या हमारे अपने भारतीय मानकों के हिसाब से ये चलता रहे।
0: क्या कभी लैंड एक्विजिशन को लेकर किसी तरह की कोई समस्या हुई है भूमि अधिग्रहण को लेकर?
1: ये वाकई ही एक प्रश्न ऐसा है जो एक द्विधापूर्ण रहता है हर एक जो भी पवन ऊर्जा का उद्यम लगाना चाहता है। क्या होता है कि पवन ऊर्जा की या पवन चक्कियां जो है इकट्ठी साथ साथ, जैसे आप सौर ऊर्जा को देखते हैं लगातार लगे हुए हैं
0: जी,
1: ये लगातार नहीं होते, इनके बीच में कुछ दूरी रखी जाती है ताकि एक का ब्लेड चलने से और दूसरे के चलने से उन दोनों के हवा का टकराव ना हो, और उन दोनों के टकराव को रोकने के लिए उसके बीच में कुछ डिस्टेंस रखा जाता है। इसके भी मानक बने हुए हैं
0: जी,
1: और जो मानक हमारे सिस्टम से या बहुत प्रयोग करके या बहुत उसके ऊपर जो है स्टडी करके बनाए गए हैं, तो उसमें जितना हमारा ब्लेड का डायामीटर या उसका व्यास रहता है उसके 3 गुना या 5 गुना दूरी उससे रखनी पड़ती है, ताकि दोनों ही टरबाइंस का आगे पीछे सामने साइड में कहीं पर भी हमारा इसका आपस में हवा का टकराव ना हो, और उसकी वजह से एक बवंडर ना पैदा हो
0: जी।
1: क्योंकि बवंडर पैदा होने से हमारी मशीन जो एक लिमिट तक जो घूम सकती हैं वो थोड़ी सी हो जाती है, और हमें वो मशीन को रोकना पड़ता है
0: जी। तो इसके लिए फिर जमीन भी काफी ज्यादा चाहिए होती
1: हाँ,
0: है।
1: हाँ, देखिए हर टरबाइन जो है लगभग 2 से 2.5 हेक्टेयर के बीच में एक लगता है, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ दी जाती है जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगला भी उसी तरह से, पर ये 2-2.5 हेक्टेयर जो जगह है ये ऐसे नहीं, इसके ये किस साइज की या कितनी बड़ी हम टरबाइन लगा रहे हैं उनके ऊपर, और आजकल जो है इसके बीच के दूरी के ऊपर कई लोगों ने सौर ऊर्जा भी लगानी शुरू कर दी है, ताकि उसको विंड सोलर हाइब्रिड का कार्य किया जा सके,
0: यानी दिन में सौर ऊर्जा मिलती रहे और पवन चक्कियां जो है रात भर काम करती रहे।
1: यही नहीं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक संसाधन हमें बनाने पड़ते हैं विंड मिल के लिए, उनका भी उचित इस्तेमाल हो जाता है
0: जी।
1: कि जिस समय जैसे सुबह 8 से 7 बजे से 4 बजे तक हमें सौर ऊर्जा मिलती है, उसके बाद हमारी पवन ऊर्जा का उत्थान होता है, तो वो जो ग्रिड लगी है, जो हमारी तारे हैं, जो हमारे सब स्टेशन लगे हैं, उनमें वो उस बिजली को पहुंचाने में इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो खाली समय रह जाता है हमारे पवन जिस समय अच्छी नहीं मिलती उस समय सूरज मिल जाता है।
0: जी, आपसे जानना चाहूंगी प्रवीर जी, हम अक्सर युवा जो हैं आजकल वो घूमना बहुत पसंद करते हैं, और ऐसे में जब हम नई जगह पर जाते हैं उस जगह की हिस्ट्री भी जानते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी समझते हैं और वहां जो हाइलाइट्स हैं उनको देखना चाहते हैं, तो जहां पवन चक्कियां होती हैं वो पूरा क्षेत्र अगर हम बात करें तो पर्यटन को ध्यान में रखते हुए क्या उस क्षेत्र में भी कुछ योगदान कर सकता है, और क्या ये पूरा एरिया सेफ होता है अगर हम पवन चक्कियों को नजदीक से देखना चाहें तो?
2: हाँ बिल्कुल, जैसे कि तनुजा जी ने भी बताया कि ये जो पवन प्रोजेक्ट्स है ये ज्यादातर रिमोट प्लेस पे ही होते हैं और शहर से थोड़ा दूर भी होते हैं।
0: जी,
2: किसी भी पवन चक्की के प्रोजेक्ट के कारण वहाँ पे अच्छे रास्ते बन जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ जाता है, लोगों की इनकम थोड़ा सा बढ़ जाता है।
0: जी,
2: तो जाहिर सी बात है कि फिर वो पर्यटन में भी योगदान करता है, जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छा होगा, होटल से रहने के लिए भी अच्छी मिलेगी।
0: जी,
2: तो पर्यटन पे भी वहाँ पे सहायता होता है। अगर आप देखने भी जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही सेफ होते हैं ये, जैसे इन्होंने बताया कि हमारा पूरा हम जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम बनाते हैं।
0: जी,
2: हमारा अपना ही BIS स्टैंडर्ड है और हमारा मंत्रालय का एक मैकेनिज्म है जिसको हम RLMM बोलते हैं, अभी हमने उसका नाम परिवर्तन करके ALMM कर दिया है।
0: जी,
2: दैट इज अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, व्हिच मींस कि जो प्रत्येक मैन्युफैक्चरर जितने भी मॉडल बनाते हैं हर मॉडल की जो क्वालिटी है उसको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना पड़ता है, जिसके ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंस मंत्रालय खुद रखता है।
0: जी,
2: फिर वो लिस्ट बनती है, तो सिर्फ वो लिस्ट में आने के बाद ही वो इंडिया में लग सकते हैं। तो जितने भी टर्बाइन लगे हुए हैं
0: जी
2: वो निश्चित रूप से वो क्वालिटी को कम्प्लाई करते हैं।
0: जी,
2: तो ये बिल्कुल ही सेफ होते हैं। हाउएवर ये बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं।
0: जी,
2: जैसे कि मैंने बताया कि जो सेफ्टी होता है उसको कभी जीरो नहीं किया जा सकता, उसको हम कम करते हैं।
0: जी,
2: तो ऐसा नहीं है कि उसके नीचे जाके हमेशा खेलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर पवन चक्की लगा है तो वे बिल्कुल सेफ है। इनफैक्ट जैसे इन्होंने बताया कि एक पवन चक्की से दूसरे पवन चक्की के बीच में जगह खाली होता है, तो वहां पे इनफैक्ट कृषि भी होती है, सोलर का पैनल भी लगाया जा सकता है या उस जमीन का दूसरा उपयोग भी करा जा सकता है।
0: जी,
2: इनफैक्ट सोलर और विंड में ये भी एक पार्थक्य है कि वहां पे उनको कंटिन्यूअस लैंड चाहिए और सारे के सारे लैंड में सोलर मॉड्यूल लग जाता है, बट पवन चक्की के लिए हम उसको फुटप्रिंट एरिया बोलते हैं, जहां पे वो पवन चक्की खड़ा है और उसके चारों तरफ थोड़ा जगह छोड़ना पड़ता है कि कभी मेंटेनेंस के लिए क्रेन का मूवमेंट हो, बाकी जो जमीन है वो दूसरे उपयोग में आ सकते हैं और वहाँ पे लोग भी रह सकते हैं। कंटिन्यूअस रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा जो मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है वो ये बोलता है कि 500 मीटर तक का, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत साउंड भी आता है, तो वो साउंड के कारण हमारा आज का गाइडलाइन है कि 500 मीटर तक का कोई ड्वेलिंग क्लस्टर नहीं होनी चाहिए। मतलब वहां पे कोई अगर गांव है, गांव बसा हुआ है, तो वहां से फिर वो 500 मीटर दूर ही रखेंगे उसको।
0: जी, लेकिन ऐसे घूमने के लिए जा सकते हैं समझने के लिए।

0: रिसर्चर्स हैं
1: और वो
0: सड़क
1: से आई थिंक उसका जो हाइट होती है टिप हाइट तक आप मान के चलिए
0: जी,
1: उतना दूर में कोई सड़क नहीं रहता, मतलब जो कॉमन लोगों का यातायात का सड़क होता है वहां से वो उतना मेंटेन करते हैं डिस्टेंस, ताकि अगर कभी किसी कारणवश वो गिर गया तो वहां पे जाते हुए लोगों को वो ना लगे
0: जी। और वैसे भी बहुत ऊंची होती है तो दूर से भी दिखाई देती है,
1: बिल्कुल, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिकल हैजर्ड भी है, इट इज नॉट ओनली मैकेनिकल हैजर्ड, वो गिरेगा भी नहीं तो क्योंकि वो बिजली पैदा करते हैं और बिजली संरचना का एक हिस्सा है
0: जी,
1: तो वहां पे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड भी रहता है
0: जी।
1: तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि वहां पे लोग जाए उसको छुएं,
0: एक निश्चित दूरी से देखा जा सकता है जी। यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो टर्बाइन्स है इनकी कितनी लाइफ होती है और जब वो पुरानी हो जाती है तब उनका क्या किया जाता है?
1: तो जो टर्बाइन्स है उनका लाइफ निश्चित रूप से 25 साल होते हैं, बट उनकी हम बोलते हैं जब डिजाइन लाइफ, जब उनका सर्टिफिकेट लेते हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से
0: जी।
1: कुछ पुराने टर्बाइन्स है जिसमें वो 20 साल भी था, बट आजकल के जितने टर्बाइन है वो 25 साल के लिए बनते हैं, और इनफैक्ट लोग अभी सोच रहे हैं कि इसको 30 साल या 35 साल किया जाए, क्योंकि जितना टर्बाइन का लाइफ ज्यादा होगा तो उसमें हमें जो पर यूनिट बिजली पैदा करने के जो कॉस्ट लगता है वो कम होगा, तो हमें और सस्ते में बिजली मिलेगी
0: जी।
1: तो कोशिश यही रहता है इंजीनियर्स का, साइंटिस्ट का, कि इसका लाइफ को आगे बढ़ाया जाए। और आपको जान के खुशी होगी कि जो पवन चक्कियां होती हैं इसमें जो भी मटेरियल लगती है जिस पदार्थ से बनते हैं उसका 85% मेटल्स होते हैं
0: जी।
1: तो जो मेटल्स होते हैं हम सबको पता है कि वो रिसाइकल हो जाते हैं, और इसका कॉस्ट इनफैक्ट हमें कभी भी स्क्रैप जो है, चाहे वो आप कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, यू नेम ए मेटल, स्टील ले लो, उसका कॉस्ट हमेशा बढ़ता ही है, तो स्क्रैप वैल्यू भी बढ़ेगा आगे जाके, और उसको हम 100% रिसाइकलिंग करा सकते हैं। बाकी जो 10-15% रह जाता है वो होता है वो जो ब्लेड, जो पंखा के बारे में बात किया, वो पंखा नॉर्मली हमारा ग्लास फाइबर रीइन्फोर्स रेजिन से है उसमें, तो वही है जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, बट एंड ऑफ लाइफ के बाद उसका भी बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसको डिस्पोज करने का तरीका भी है। उसको हम जला सकते हैं, वो उसका जो आस बनता है वो सीमेंट इंडस्ट्री में जा सकता है, या तो उसको जो वो बहुत बड़े होते हैं उसको काट के, इनफैक्ट आप जो शेडिंग होती है जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, बस स्टैंड हो, साइकिल स्टैंड हो, इनफैक्ट यूरोप में बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे वो सब जो सिटिंग प्लेसेस है, इट इज यूज लाइक ए शेड। और अभी बहुत ही नए चीज है ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी एक ऐसा रेजिन लोग अभी डेवलप कर चुके हैं जहाँ पे जो ग्लास फाइबर से या कार्बन फाइबर से वो ब्लेड बना है 25 साल बाद हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं, जिस रेजिन से वो बनता है कुछ और केमिकल प्रोसेस करके वो 100% वो भी रिसाइकल हो जाएगा
0: जी।
1: तो पवन एक ऐसा अक्षय ऊर्जा बनने जा रहा है जहाँ पे 100% चीज एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से रिसाइकल हो जाएगा
0: जी।
1: और आपको एक और जानकारी देता हूँ कि जितने अक्षय ऊर्जा टेक्नोलॉजी है, चाहे सोलर हो, बायोमास हो, हाइड्रो हो, पवन हो, पवन शक्ति एक ऐसा शक्ति है जहाँ पे हम उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट
0: जी,
1: लाइक एक यूनिट बिजली पैदा करने में आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड निर्यात किया है, लाइक जो मैंने बता रहा हूँ स्टील लगा है, कुछ लगा है, तो ये सबको बनाते हुए आपको कुछ एनर्जी खर्चा करना पड़ा होगा,
0: बिल्कुल,
1: तो उससे कुछ ना कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने वायुमंडल में छोड़ा है, तो सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट पवन ऊर्जा का होता
0: जी।
1: तो पर्यावरण के लिए ये सबसे फ्रेंडली है
0: जी। यानी बहुत ही साधारण शब्दों में समझें तो एक यूनिट बिजली बनाने के लिए अन्य माध्यमों से हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पर्यावरण में, पवन ऊर्जा में वो सबसे कम है। और एक लाभ ये भी है कि जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी टर्बाइन्स है, वो रिसाइकल हो जाती है, और जो भी हम उन्हें डिस्पोज ऑफ करते हैं वो भी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्यावरण के हित में भी है और हमारे हित में भी है जी। तो चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगी ओम जी, जो आपका संघ है, आपने बताया कि कई तरह की समस्या आती हैं और उसका हम समाधान निकालते हैं, और मंत्रालय से भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और मंत्रालय की अपनी गाइडलाइंस है जिनको आप सब लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है अगर वो जुड़ना चाहें तो क्या उन्हें दूसरे बिजनेस जो है उन्हीं के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा, या वो अपने आप भी अप्रोच कर सकते हैं? जैसा आपने कलाकारों का बताया कि वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या उसका तरीका है, वो कहाँ अप्रोच करें, क्या कोई वेबसाइट है इसकी, कोई लिंक है?
2: देखिए आज के दिन क्योंकि ज्यादातर पवन ऊर्जा जो लग रहे हैं
0: जी
2: वो बिल्डिंग पे लग रहे हैं, पर इसके साथ साथ एक जो छोटे उद्योग में इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हैं उनके लिए भी ये संभव है कि वो एक मशीन, दो मशीन, चार मशीन लेके लगा दें। अभी क्योंकि उनको डिस्काउंट्स में जो है थोड़ा सा उनके लिए डिस्काउंट अपने सुविधा अनुसार उसके अंदर नहीं जुड़ते हैं, तो एक किस्म के स्वयं इस्तेमाल के लिए जिसे हम कहते हैं कैप्टिव पावर कंजम्पशन, के एक उद्योग में अगर मान लो 10 मेगावाट का या 5 मेगावाट का कुछ उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो अपनी पवन चक्कियां लगाकर

0: किसी मैन्युफैक्चरर के साथ मिलके एक पवन चक्की लगाकर उसको अपने ही क्षेत्र में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा बहुत हो रहा है जिसमें कैप्टिव पावर जो है एक किस्म से अपनी पावर बना के अपने आप ही इस्तेमाल करते हैं इसको। ऐसा संभव है और हुआ भी है। और इस पावर को कई बार ये मॉल्स वगैरह वाले ये सब भी अपने उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितने मॉल्स हैं उनको पावर जो है डिस्कॉम की पावर महंगी मिलती है और अपनी पावर उससे कुछ बचत कर पाते हैं, इसलिए इस कैप्टिव पावर का एक उपयोग जो है वो कर सकते हैं।
1: जी, तो एक तरह से ये प्रेरणा भी मिलती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त अगर हम चाहें तो पवन ऊर्जा क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं और उससे भी कमाई हो सकती है। जी, हमने बचपन में ये कविता पढ़ी है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, लेकिन इस हवा का जादू जो है वो आज हमें समझ में आया कि पवन ऊर्जा जो है वो किस तरह से कारगर है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान है, पर्यावरण में भी इसका योगदान है और जो आम जन है उनके जीवन को बेहतर बनाने में भी इसका योगदान है। इसके लिए मंत्रालय है जो नीतियां बनाता है और सहायता करता है और इसके लिए इस तरह के इंडिविजुअल्स जो है वो संघ भी हैं जो कि जागरूक कर सकते हैं, जिनसे मदद ली जा सकती है। तो चलते चलते ओम जी, आपकी पसंद का एक गाना हमारे श्रोताओं के लिए।
0: पंछी नदिया पवन के झोंके,
1: जी
0: ये एक अच्छा गाना हो सकता है।
1: बिल्कुल, ये गाना बहुत अच्छा है, हमारे कार्यक्रम की थीम से मैच कर रहा है। पवन के झोंके जो है बहुत ही जादू का काम यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज कार्यक्रम में हमने बात की पवन ऊर्जा के बारे में और कार्यक्रम में हमारे साथ थे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रबीर कुमार दास। आप वैज्ञानिक हैं लेकिन बहुत सरल भाषा में आज आपने हमें पवन ऊर्जा जो है उसकी पूरी कार्य प्रणाली वो समझाई। हमारे साथ कार्यक्रम में रहे उद्यमी ओम तनेजा जी जो कि भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ से भी जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी अपना समय हमें देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। प्रबीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको, श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार
0: जी। ओम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अति धन्यवाद, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि हम इस कार्यक्रम में भाग ले सके, हमारे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, धन्यवाद।
0: तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जब आप बच्चों को हाथ में एक खिलौना लेते हुए खेलते देखेंगे जो हवा से घूम रहा है और बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखेंगे उनके बीच का जो रिश्ता है वो आपको समझ में आएगा और पर्यावरण से आप थोड़ा और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स और दिलीप झा। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
4: पोस्ट बॉक्स नंबर
5: 111। आकाशवाणी एफएम रेनबो,
6: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
7: 5:12:05 और 45 सेकंड्स, आप आ चुके हैं एफएम रेनबो मुंबई में। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मृण्मयी मनजा। 12 बजे के मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, असैन्य चालक दल को खतरे में डालना और नौवाहन की स्वतंत्रता में बाधा डालना अस्वीकार्य है। हरीश जी ने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षित आवागमन से संबोधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और रुपए की कमजोरी के कारण बीते सप्ताह स्थानीय शेयर बाजार में भारी बिकावली देखने को मिली। इसके चलते देश के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 9 के बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैप में सामूहिक रूप से 3,12,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई। सप्ताह के दौरान बीएसई का सेंसेक्स 2,090 अंक टूट गया जबकि निफ्टी में 533 की गिरावट आई। वाहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली सीएनजी की कीमतों में रविवार को 1 रुपए प्रति किलोग्राम की और बढ़ोतरी की गई। इस एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त।
6: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: legally yours.
1: आप आ चुके हैं इस गर्मी में म्यूजिक कैफे में, क्योंकि वक्त है भाई 12 से लेके 1 बजे हर रोज सुनते हो म्यूजिक कैफे। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मृण्मयी मनाजा। और म्यूजिक कैफे का शटर तो हमने चले खोल दिया, और बाहर की जो ये धूप है, खास तौर पे रविवार के दिन कहीं जाने का मन करे तो भी थोड़ा सा मन डर सा जाता है। नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ हो वहीं पे बैठे अगर कैफे का मजा आ जाए तो वो भी म्यूजिक के साथ। तो बस म्यूजिकली योर्स हम हैं ना आपके साथ 107.1 FM रेनबो मुंबई। दिल का जो हाल है कैसे बयां करें समझ ही नहीं आता।

0: ये है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर मुंबई का सबसे पहला एफएम चैनल।
1: दिल का हाल बयां करने के लिए कभी कभी म्यूजिक का साथ लेना ही पड़ता है, जैसे कि अभी म्यूजिक कैफे में बैठ चुके हो शांति से। शटर खुल चुका है, कुर्सी खींच ली है, एक तरफ तुम हो एक तरफ मैं हूँ, तुम्हारी आरजे मृन्मयी मनोजा। और ये जो गाना सुना है ये था भाई बेशरम फिल्म का। अभिजीत की आवाज़ और साथ श्रेया की आवाज़ मिल जाए तो बस एक 90s का मजा आ जाता है नहीं। लेकिन ये 90s का गाना है नहीं, पता है? नहीं पता चलता ना बिल्कुल। कभी कभी कुछ नए गाने भी ऐसे बन जाते हैं जिनका म्यूजिक एकदम पहले की तरह होता है। ललित पंडित का म्यूजिक है तो जाहिर सी बात है समझ में आता ही है कि क्यों माहौल जो है ऐसा हो गया है। तो दिल का हाल कैसा है मुझे बताओ 8657661071 पर 8657661071।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हाय, मैं हूँ सलीम मर्चेंट और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए।
2: आई एम माधुरी दीक्षित एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन FM रेनबो।
3: Hi, I'm Kabir Bedi and you're listening to FM Rainbow Channel of All India Radio. We're an old-time
4: love. Namaste dosto, main hu Dino Murya aur aap sun rahe hain 107.1 Rainbow FM from All India Radio.

हाथों में हाथ डालकर जब हम चले तो जो तकलीफें हैं उन पर हल्का सा मरहम तो लग ही जाएगा, है ना। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृण्मयी मनोज, और आपका मैसेज मुझे मिला है। बिल्कुल मृण्मयी जी, आपने अभी अभी बोला हमको तो पहले धूप ही नहीं लगती थी, हम तो धूप में घूमना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारा व्यवसाय सब्जी बेचने का है। और उसमें भी एक बात है, आपने अभी म्यूजिक कैफे का फाटक तो खोल दिया, तो अच्छे अच्छे गाने आप जो हमको सुना रहे हो, इसलिए हमको धूप भी नहीं लगती। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मेहनत का काम करते हो आप सच में, मतलब किस तरह धूप को झेल कर अपना काम लोग करते हैं, बहुत ही परेशानी की बात है। थोड़ी सी हल्की सी ठंडक कहीं ना कहीं बातों से ही सही, गानों से ही सही पहुंचा पाऊँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब इससे थोड़ी सी ठंडक मुझे भी मिल जाती है। 12:20 हो रहे हैं इस वक्त, और नशा किसी भी तरह का बुराई होता है। वैसे अगर किसी से प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, या फिर मोहब्बत भी छोड़ो ना, उससे पहले का जो उन्स होता है, हल्का सा कोई अच्छा लगने लगता है, थोड़ा थोड़ा, वो जो एक समा होता है, वो पल दोबारा कभी वापस नहीं आता। इसलिए आपने गौर किया होगा, कई बार लोग कहते भी हैं कि वो पहली सी मोहब्बत एक बार करके देखो, होता नहीं है ना, लेकिन ख्यालों में से ही हम जी लेते हैं कुछ पल। किसी इंसान का, किसी खास का नशा भी सर चढ़कर बोलता है।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: ये था रे स्त्री का गाना, सुन रहे थे नेहा भसीन और दीप की आवाज में, और अब उदित नारायण।

दीवानो कैसे हो? फिलहाल ये गाना सुन रहे थे भाई, मन फिल्म से उदित नारायण की आवाज के साथ साथ समीर के लिरिक्स। ये है म्यूजिक कैफे 107.1 FM रेनबो मुंबई पर, और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृण्मयी मनाजा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

किसी भी नशे से निकलना कितना मुश्किल होता है आपको तो पता ही है, लेकिन ये भी हमारी फिल्मों के गानों का कसूर है। कभी कभी हमें इंसान तो नहीं मिलता, लेकिन मोहब्बत से मोहब्बत हो जाती है ना। और जब ऐसा भी कोई नहीं मिलता जो ऐसे मोहब्बत करे जैसे हमें चाहिए, तो भाई कुछ पल अपने लिए निकाल कर खुश हो जाना मतलब कोई बुरी बात तो नहीं है। कभी कभी किसी को अपने आप को ही सही किसी दूसरे की आंखों से देखो तो भी अच्छा लगता है। चलो उसके बारे में भी बोलूंगी, लेकिन फिलहाल ये जो इश्क है, मोहब्बत है, जो हमारी फिल्मों की कहानियों में इतना प्यारा सा लगता है, असल जिंदगी में हो ना हो लेकिन एंजॉय करने को किसने रोका है। बैठ कर म्यूजिक के साथ माहौल जमाना कोई हमसे सीखे, आपसे और हमसे, है ना। तो बस अब हमारे कहानी में दीवाने की जो हालत है उस पर फितूर सवार है, यार कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहां खींचे चले जा रहे हैं चुंबक की तरह। इश्क के बेताज बादशाह अरिजीत सिंह की आवाज में

0: हाय, मैं हूँ सलीम मर्चेंट और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए।
2: आई एम माधुरी दीक्षित एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन FM रेनबो।
3: Hi, I'm Kabir Bedi and you're listening to FM Rainbow Channel of All India Radio. We're an all-time
4: love. Namaste dosto, main hu Dino Moria aur aap sun rahe hain 107.1 Rainbow FM from All India Radio.

पहली बार, पहली मुलाकात और पहली बात कई बार बहुत अच्छी होती है, मगर अगर इंसान जो है बाद में बुरा ना निकले ना तो एहसास अच्छा रहता है। लेकिन अगर वही इंसान बाद में बहुत ज़्यादा हीरो से विलन बन जाए या हीरोइन से विलन बन जाए तो फिर हाँ, समझ सकती हूँ मैं आपके दिल का दर्द। पर इस वक्त दोपहर की इस गर्मी में हम दर्द की बात करने के लिए थोड़ी बैठे हैं म्यूज़िक कैफे में। 12 से लेके 1 बजे दोपहर के सुन रहे हो अपनी आरजे मृण्मयी मनजा के साथ। तो जाहिर सी बात है कि फितूर हो और लैला मजनू की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता है ना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
2: म्यूजिक कैफे सुन रहे हैं आप इस वक्त, और थोड़ा सा जो नशा है जो कि जिंदगी से मिसिंग है, कहीं खो गया है, उसे हम लेके आ रहे हैं म्यूजिक के साथ। जाहिर सी बात है, बातों का सिलसिला चल रहा है 8656601071 पर, यानी कि मुझे अपनी आरजे मृण्मयी को व्हाट्सएप कर सकते हो 8657661071 पर। जैसे कि सभी के मैसेजेस इतने सारे आए हैं, गाने बहुत बढ़िया हैं, बातें आपकी बहुत अच्छी लगी, बात एकदम आपने सही कही, ये जो सभी आपके आ रहे हैं ना, मैं भी देख रही हूँ। हाँ हाँ, सभी को अपना पहला इश्क याद आ रहा है वो बात नहीं है। देखें क्या होता है कि जब कोई नहीं होता ना, तो खुद से भी इश्क करना पड़ता है। मैं अपनी फेवरेट हूँ वाली टाइप्स, पहले अजीब लगता था वो जवी मठ में जैसा था गीत का किरदार ना, लेकिन एक वक्त आता है जिंदगी में सच जब आपको लगता है कि अरे यार कितनी अच्छी हूँ मैं। एक ऐसा एक पल होना चाहिए, किसी और की आंखों से जब आप अपने आप को देखते हैं तो कभी कभी नज़रिया बदल सा जाता है। अपने लिए ना बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं कभी कभी, हम अपने बारे में बुरा सोचते हैं कि नहीं हम कम हैं या फिर हम अच्छे नहीं, उतने लायक नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ किसी को हल्का सा भी एक इश्क होता है, खुमार चढ़ता है, तो बस फिर क्या, दीवाने की आंखों से देखें तो सब कुछ खूबसूरत सा लगता है नहीं, और फिर क्या, राहें भी इकट्ठी सी लगती हैं, जहाँ भी जाएं वही होते हैं।

0: मर्ज कैसा है, यानी कि बीमारी कैसी है, नाम तो बताए, इश्क ही है भाई। गाना सुन रहे थे मलंग, अनलीश द मैडनेस, ये वाले फिल्म से सचिन टंडन के साथ द फ्यूजन प्रोजेक्ट।
1: ये है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, मुंबई का सबसे पहला FM चैनल।
0: म्यूजिक कैफे की बात ही यही खास होती है कि चले थोड़ी सी ठंडी सी कोल्ड कॉफी आप पी रहे हो या नहीं, लेकिन हवा की ठंडक के

साथ साथ बातों की महक के साथ साथ जो एक माहौल जमाते हैं ना भाई, कैफे में नहीं हो के भी, खेत में हो, सब्जियां बेच रहे हो या फिर ट्रेन के धक्के खा रहे हो, धूप में रास्ता क्रॉस कर रहे हो और पसीने छूट रहे हो, लेकिन अगर कानों में या फोन में मोहब्बत हो रही हो तो थोड़ा सा अच्छा लग जाता है ना। क्या करे, करना पड़ता है ऐसा, अपने लिए किया करो, कभी तो खुद से प्यार किया करो। जब खुद अपने आप को अच्छे लगोगे ना तो जो वातावरण है ना है दिल है मुश्किल याद है, उसमें वो डायलॉग था ना, उन्होंने उस दिन मुझे एक शब्द कहा, एक अल्फाज कहा, वातावरण, वातावरण है वो, वैसे एटमोसफियर, बस वही अपने आसपास का वो जमाना पड़ता है तब जाकर मजा आता है बातों का भी और जीवन का भी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
2: 12:50 हो गए, 10 ही मिनट बचे हैं म्यूजिक कैफे के फाटक के यानी कि शटर के बंद होने के लिए, और उसके बाद होगा हिट एंड हॉट। कहीं नहीं जा रहे हम भाई, काफ़ी हॉट है मुझे पता है, गर्मी तो है लेकिन उसी के साथ साथ हिट गाने और हमारी हिट एंड हॉट बातें भी तो होंगी। बस यही है कि जब तुम यूँ देखते हो, अच्छे लगते हो, सच पूछो तो किसी की आंखों में चमक अपने आने से, वो चेहरा यूं खिल उठना, भले आप उन्हें चाहो या ना चाहो, मोहब्बत या उनके भले एक तरफा क्यों ना हो। अभी ये दिले मुश्किल है कि बात कर ही रहे थे, और बहुत ताकत होती है भाई एक तरफा मोहब्बत में, भूलना नहीं है। पर अगर मासूम सी चाहत हो ना तो जरा अच्छा तो लगता है, अपना कुछ हो ना हो, गैर की खुशी में ही खुश होते हुए हम। देखो अभी सिंगल्स और कपल्स दोनों को एक साथ लिए चल रही हूँ मैं।

खुद ही समझ के मुझे समझा दे तो हो मेहरबानी। 12:55 हो रहे हैं इस वक्त, यानी थोड़ा सा ही समय, कुछ ही मिनट बाकी है हमारा भी हैप्पी एंडिंग, मतलब एंडिंग नहीं होने वाला, 2 बजे तो हूँ मैं, जैसे कि आपने पूछा था अभी व्हाट्सएप पर, है बिल्कुल साथ दोपहर 2 बजे तक का। तो ये फिल्म का नाम है हैप्पी एंडिंग, अरिजीत सिंह और प्रिया सरैया की आवाज़ें एंजॉय कर रहे हो, और ये प्यारा सा जो म्यूज़िक है सचिन जिगर का है, हल्की सी मिठास, आपकी कॉफ़ी हो, छास हो, लस्सी हो, इस वक्त फ्रेश लाइम सोडा है, जो कुछ भी पी रहे हो अपनी ठंडक के लिए, भाई हाइड्रेट करते रहो, पानी पीते रहो, इश्क का क्या है, ये नशा तो उतर भी जाएगा, लेकिन गर्मी का नशा ना बहुत बुरा होता है, इससे बच के रहना मेरी जान। तो ऐसा है, दीवाना मस्ताना बेगाना जलते चले जाना, ये तो है उसका काम मेरी जाना, लेकिन हमारा काम क्या है, खुश रहना। जैसे सैफ अली खान ने कहा था ना कि वैसे जिंदगी का पर्पस नहीं पता, लेकिन क्या मकसद है, क्या वजह है वो तो नहीं पता, पर हाँ खुश रहना हमेशा, एक अच्छा वक्त बिताना, ये कहीं ना कहीं दिल में रह ही जाता है। एक बहुत ही प्यारा सा गाना वैसे इस एक तरफा इश्क के बारे में, हैप्पी भाग जाएगी में से था ना आशिक तेरा, उसमें अगर गौर फरमाओ तो ये इंसान जो है बहुत ही गलती से अचानक से इस हालात में पहुंच जाता है कि उसे प्यार हो जाता है हीरोइन से, लेकिन वो उसे पा नहीं सकता क्योंकि वो किसी और को चाहती है, पर इतना सुकून उसमें कि बस हो गए हम आशिक तुम्हारे, कोई बात नहीं, जैसे कि ये गाना भी है वैसे, इसमें लेकिन सुकून नहीं था पर गाना अच्छा है। तुम तक सिर्फ यही 2 शब्द थे जिससे इस गाने की कॉम्पोजिशन जो है मतलब बनना शुरू हुआ था, इतने में ही लॉक हो गया था, और क्यों ना हो, गाना ही ऐसा है।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। मराठी समाचार सुन रहे थे और समाचार के उस पार आ गए हैं हिट एंड हॉट में। ये है आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। सीधा प्रसारण आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी के डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पे ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं, जहां भी हो, मुंबई के बाहर, दुनिया के किसी भी कोने में। और ये हमारे समय का आखिरी पड़ाव हिट एंड हॉट, एक घंटा और इस वक्त आपकी सारी बातें शामिल होती हैं, तो पूरी पूरी कोशिश रहेगी। ये एक मैसेज पढ़ती हूँ मैं। जीतेश लिखते हैं अलीबाग से कि ये जो तेरे संग काटी रातें, ये वाला गाना सुनना चाहते हैं। ये शायद कुणाल खेमू वाला है ना? ठीक उसी के साथ हमारे साथ आप लोग सुबह से लगे हुए हैं। नमस्कार ब्रह्मई, बहुत दिन के बाद आपकी आवाज़ सुनी। हैप्पी संडे। धनंजय खोलब जो है नवी मुंबई वाशी से लिखते हैं। तेलंगाना से शंकराचार्य लिखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और प्रदीप अनंत कृष्णन, इन्होंने हमें मैसेज भेजा हुआ है 11 से भेजा है। आप लोग मतलब एकदम शुरुआत से, जब हम अपने बारे में भी नहीं बताते तब से हमारे साथ है, तो हमें माफ़ कीजिएगा।

0: देसी बॉयज फिल्म का नाम सोनू निगम और शिल्पा राव एक साथ गाने में। इरशाद कामिल के लिरिक्स हैं और प्रीतम का है म्यूजिक।
1: ये है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मुंबई का सबसे पहला एफएम चैनल
0: और इस पर इस वक्त बज रहे हैं 1:11। बहुत ही प्यारा सा समय, आपको पता ही है जब जब ऐसे अंक रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, मजा आता है। एक एक एक है मेरी नजरों के सामने इस वक्त और आप सभी के एक एक गाने भी हम तक पहुंच चुके हैं 865-66-1071 पर। और पंकज मोहड और सोहेल का ये गाना आप लोगों ने अभी अभी सुना। आप सभी के मैसेजेस, गाने हो पाए या ना हो पाए लेकिन बातें जरूर शामिल करूंगी। तो उसके बाद थोड़ी सी है हमारी गाड़ी आगे बढ़ाते हुए, मेहर अरोरा है, ये पूरा परिवार हमें हमेशा ही ये सुनते हैं, ममता कीर्ति भूमिका और जादूगर ये सुनना चाहते हैं ये वाला गाना। फिरोज हमारे साथ सुबह से ही हैं और पूरे के पूरे अपने म्यूजिक ग्रुप के साथ स्पेशल संडे ग्रीटिंग्स, आपको भी बहुत एंजॉय करें, इंदौर तक भी हमारी आवाज़ पहुंच ही जाती है फिल्म रेनबो की। फिल्म ये सुनना चाहते हैं हिंदी मीडियम का, तेनु सूट सूट करदा, अजय अभिजीत ने, अभिजीत आप अपना सरनेम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, ये गवाणकर, अभिजीत गवाणकर राही, आई होप मैं सही बोल रही हूँ, उनके साथ इनकी श्रीमती भी हैं सरिता और इनके साथ है प्रणीता, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश और इनका लाडला टुक टुक भी है। ये स्वदेश का गाना सुनना चाहते हैं, ये तारा वो तारा, दादर से बाबा हमेशा की तरह और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हमें। और काजल हमारी लोचा ये उल्फत, ये आप पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी हैं, है ना, नहीं तो सैयारा का ये सुनना चाहती हैं या फिर एक था टाइगर का। हिमानी वर्मा है हमारे साथ और पारस मणि भी हैं, पुष्पेंद्र हैं और नोखेलाल वर्मा भी हैं। सप्रेम नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें मैसेज करने के लिए। दिग्दर्शन और कविता हमेशा की तरह, अभी आप इंडिया में हो या बाहर, वैसे वो तो आपने लिखा नहीं। चले एक और गाना, आप सब चले आना आ ही रहे, तो ये गाना आ जाए, उसके बाद बाकी की बातें शामिल करते हैं।

0: दे दे प्यार दे, नहीं मांग तो लेते ही हम, मांगना पड़ता है कभी कभी, फिल्म का नाम है वैसे, दे दे प्यार दे। अरमान मलिक की आवाज सुन रहे थे, कुणाल वर्मा और अमाल मलिक।
1: ये है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, मुंबई का सबसे पहला एफएम चैनल।
0: और इस पहले फिल्म चैनल पे मैं हूँ आपकी आरजे मृण्मयी मनोजा। प्रणव ने हमें सुबह से मैसेज करके भेजा हुआ था ही कि दे दे प्यार दे, जो आज वैसे 7 साल पूरे हो रहे हैं। अजय देवगन, टबू, रकुल प्रीत थे इस फिल्म में, 7 साल रिलीज के पूरे हो रहे हैं। साथ ही साथ जान के भी 30 साल पूरे हो रहे हैं, अजय देवगन और ट्विंकल साथ, है ना। तो इसी के साथ जो है आगे बढ़ती हूँ। विजेंद्र, बिल्कुल मैं देख रही हूँ कि आप जो है दूसरों की चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। हमने शुरुआत की थी अल्लाह माफ़ करे से, वो वाला गाना भी जो दूसरों की पसंद थी वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। आगे मैं पढ़ती हूँ, ये जो देश है तेरा, ये फिल्म स्वदेश, ये सुनना चाहते थे। स्वदेश के काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं।

स्थल मुंग से हैं ये, अहिल्या नगर से, और राजेंद्र परमार, राजेंद्र हमारे दो तीन हैं वैसे, आप सभी के मैसेजेस मैंने पढ़े हुए हैं, आदरणीय मृन्मयी मनोज इतना प्यार से आप सब लोग लिखते हैं ना। म्यूजिक कैफे में आपका स्वागत करते हैं स्नेह के साथ, और दोपहर जो है बहुत ही शुभ हो, आपकी भी हो, यही मनोकामना हमारी भी है कि सब कुछ अच्छे अच्छे से हो, है ना। कौन से दशक के गीत फरमाइश पेश करें, नहीं करिए आप, अभी तो सब लोग कर ही रहे, हिट एंड हॉट का समय है, हार्दिक हार्दिक स्वागत सुबह से 11 बजे से आप लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। एक एक मैसेज मैं देख ही रही हूँ, अगर कहीं कुछ छूट जाए तो ज़रूर फिर से भेज देना। ये मैसेज मैं पढ़ती हूँ, लबों से जो लफ्ज़ निकलते हैं मोती बन जाते हैं, आपकी इस खूबसूरत, अरे अरे ये तो मेरे लिए खूबसूरत आवाज पर हम फिदा हो जाते, फिदा का गाना सुनना है आपको नहीं, मीठी बातों का असर अगर आपको सच में ठंडक दे रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। आगे मैं पढ़ती हूँ, हाई ब्रिड मई एंजॉइंग हिट एंड हॉट मस्कट से राजश्री एंड प्रशांत सुनना चाहते हैं, और सजनी रे लापता लेडीज से वैदे ही हमें सुबह से गुड मॉर्निंग बोल चुकी हैं, और साथ ही सुबह लक्ष्मी भी हैं हमेशा की तरह गाने एंजॉय कर रही हैं अंधेरी से, और ऑल द वे फ्रॉम गोवा हसीना मान जाएगी से ये व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर सुनना चाहते हैं ये श्याम सुंदर। वर्ली से स्नेहा है हमारे पास, गाने और प्रेजेंटेशन दोनों ही पसंद आ रहे, आई हाय मेरी जान, शुक्रिया।

0: जगमग तारे सौ तारे और हर तारा बहुत ज्यादा है प्यारा। भाई आप सभी की बातें बहुत ज्यादा प्यारी होती है हमारे लिए। 1:25 हो रहे हैं और ये है हिट एंड हॉट।
1: ये है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मुंबई का सबसे पहला एफएम चैनल।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: ठीक 1:40 हो रहे हैं, समाचार के उस पार बिल्कुल वापस आ चुके हो और ये है हिट एंड हॉट, जारी रहेगा कहा था आपको हमेशा की तरह दोपहर 2 बजे तक, बिल्कुल साथ है हमारा। और ये पल होता है जब आप सभी की बातें 8657661071 पर जो आई हुई हैं हमारे FM रेनबो मुंबई के व्हाट्सएप पर 8657661071 ये सारी हम पढ़ते हैं। तो जो एक नज़र मेरी रिक्वेस्ट पे और मुझसे नाराज हो, क्या ये जो सारे मैसेजेस आ रहे हैं ना, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ ऐसा हो सकता है क्या? मैं लेकिन कोशिश यही करती रहती हूँ कि सबका आ जाए नंबर। पहले गाना सुनते हैं।

0: ये है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर मुंबई का सबसे पहला FM चैनल।
1: गोरे गोरे से छोरे सुन रहे थे हम तुम फिल्म से अलका याग्निक के साथ भाई जतन ललित का म्यूजिक, प्रसून जोशी ने इसके लिरिक्स लिखे हैं और ये है लेकिन हिट एंड हॉट हम तुम कार्यक्रम में से शाम को होता है 7 से लेकर 8 बजे तक, जो कि एक और रिक्वेस्ट आवर होता है क्योंकि अभी सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और ये जो तलवारें जो हैं लटक रही है मेरे गले पे आप सभी के मैसेजेस जो आए हुए हैं, बिल्कुल मैं देख रही हूँ भाई मोहड, ऐसा नहीं है कि मैं शामिल नहीं कर रही और आपका हाल बेहाल था, ये भी आपने सुबह लिखा था जब मैंने पूछा था कि क्या हाल है दिल का, क्या हाल है, हम बात कर रहे थे तो ये तो आपने बताया नहीं कि क्यों, तो वो भी आप हमें बताएं ज़रूर। साथ ही साथ घटोल जो है हमको लिखे जा रहे हैं 11 बजे से, आप सभी को कार्यक्रम और सारे गाने पसंद आए। आज के गाने और आज की प्लेलिस्ट की बात करूं तो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो समय है लेकिन ये तो आप लोग बांध रहे हैं, लेकिन इसके पहले का एक घंटा भी आपको बहुत पसंद आया और उसके लिए बहुत शुक्रिया। फिर वो कहाँ गए जो आमरस खा रहे थे, मैं उनका वाला मैसेज ढूंढ रही हूँ। हाँ मिल गए, विक्रम ये लिखते हैं, विक्रम आठवले मिरज से, आमरस पोड़ी ये खा रहे हैं। अब आमरस तो समझ आया, पोड़ी क्या होता है ये बताओ तो लंच के साथ ही एंजॉय कर रहे हैं और हमारे पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं, बताओ क्या करें। अंडे का फंडा ये वायलेट है हमारी प्यारी सी, ये अंधेरी मुंबई से सुनना चाहती हैं, हैप्पी संडे टू यू डियर। लेकिन ये अंडे का फंडा कौन सी वाली फिल्म का ये तो मुझे बताओ ज़रा। और हमारे साथ इस वक्त मुकेश, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष, मोहिनी, बलवीर, ये सभी के सभी जो हैं एक ही परिवार से हमारे साथ हैं। गुड आफ्टरनून आपको भी रजनीकांत, रघुनाथ, आप सभी जो हमारे साथ हैं। अगला गाना ये हमारे नए वाले ने रिक्वेस्ट किया था गद्दर से, और प्रमोद इस वक्त बिल्कुल एक गुस्से वाले सेल्फी के साथ नहीं बहुत बढ़िया मृणमयी जी आपने लिखा है तो आप सेल्फी में स्माइल क्यों नहीं कर रहे हो बताओ, आप सभी को कह रही हूँ मुस्कुराओ, खिलखिलाते रहो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यही मजे की बात होती है फिल्म रेनबो मुंबई 7 रंग, क्या 7000 रंग है फिलहाल। अलग अलग जगह से जो आप जुड़े हुए हैं, मैंने पूछा था पोली जो आपका मैसेज था वो क्या था, तो मुझे उत्तर आया, पर किसी और से उत्तर आया मुझे ऑल द वे अमरावती से कि हम लोग यहाँ पे रोटी को पोली बोलते हैं, लेकिन यहाँ दुर्गा दास उन्होंने भी हमें जवाब दिया है कि पूरन पोली और उसके साथ आमरस खा रहे हैं। संडे की छुट्टी है दीदी। क्या बात है भाई, छुट्टियां मना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, खुश ऐसे ही रहा करो। क्या होता है ना, खुशी इस तरह थोड़ी सी बीमारी की तरह, अच्छी वाली बीमारी की तरह ऐसे ही फैल जाती है। आप खुश होते हैं, हम खुश होते हैं, तो ढेर सारा प्यार आप सभी को। साथ ही साथ जो रह गए हमारे, हमें लिखे जा रहे हैं मेहर, मुझे बिल्कुल पता है आपकी फरमाइश जो है वो इंतज़ार कर रही है। चिंगारी को ही भड़के ये सुनना चाहते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

और वहीं महेश बोहरा ने हमें अजमेर राजस्थान से मैसेज किया है, आदरणीय मृन्मयी एफएम रेनबो के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ, सभी प्रोग्राम्स लाजवाब हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, और सारे श्रोता बंधुओं को भी फरमाइश के लिए, एवरग्रीन गानों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

अरे नहीं नहीं नहीं मरे खुश रहे बिल्कुल। दो बजने ही वाले, थोड़ा सा ही वक्त है हिट एंड हॉट में आप सभी के गाने जितने हो सके। देखिए घड़ी इशारा कर रही है, क्या मैं करूं। अभी एक और मैसेज शिंदे जी लिख रहे हैं, मैसेज पढ़ा लेकिन नाम नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं जी, किसी ने शशि कहा है, नाम में क्या रखा है देखो नाम में सब कुछ रखा है, मुझे पता है। आप बहुत, दो टीम्स है यहाँ पे पता है, एक है जो अपना नाम चाहती है और एक है जो बिल्कुल नहीं चाहती, इसीलिए उन लोगों के नाम मतलब अनामिक अनामिका जो मैंने नाम दिया है इन लोगों को वैसे भी है। बड़ा प्यारा सा मैसेज ये, असर मीठी बातों का है बहना, वरना खामोश तो यहाँ हर कोई है रहना। क्या बात, क्या खूबसूरत आपने लिखा है या कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, बताओ बताओ। नहीं अगर खुद लिखा है तो बहुत ही अच्छा है। कानों में घुलता है जैसे कोई शहद सरस, बहुत ही बढ़िया बात है। आज वैसे भी लंच के बारे में बात कर रहे हैं, आमरस और पोड़ी का वैसे आ गया, तीन चार लोगों ने उनके लिए जवाब दे दिया। अब भाई साहब खुद जिन्होंने सचमुच में लिखा था उनका भी उत्तर आया है कि उनके लिए तो पोड़ी चपाती ही है मराठी लोगों के लिए। और ये कुछ कुछ जानने को भी हमको इसी तरह से मिल रहा है। वहीं लो अनामिक का नाम लिया, हमारे उड़ीसा से आ गए जो अपना नाम नहीं चाहते, कि बहुत ही फेवरेट सा गाने जो है आज सारे इन्होंने सुने और बहुत खुश हैं एक दूसरे की फरमाइश के साथ। आज आप सबको खुश कर दिया, नहीं थोड़ा सा ही समय बाकी है तो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मैंने लिख दिया तो चलो तुरंत आ गया हमारी काकर जी का कि मैं तो नाराज़ हूँ आपसे, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, फिर मुलाकात कब होगी कुछ नहीं पता। तो दिल में जो है खुशियाँ ही रखना, क्योंकि आगे चलते हुए जान मेरी जान आपके पास आ रहा है। गुलाब गायकवाड़ इनका भी मैसेज बड़ा प्यारा सा था, ये मैं शामिल करती हूँ। इन्होंने लिखा है लेकिन मराठी में, तो हमारी आरजी अश्विनी जो है आ चुकी हैं स्टूडियो में, मराठी कार्यक्रम अभी आप सुनेंगे। इन्होंने मुझे अनुवाद करके दिया तो मुझे समझ में आया, नमस्कार। ये हमेशा सुनते हैं गुलाब गायकवाड़ और बहुत पसंद करते हैं बातों को भी, प्रेजेंटेशन को भी और गानों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह सुनते रहें FM रेनबो मुंबई और एंजॉय करते रहें।

0: climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
4: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है।

0: इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस

0: B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है केथ हांडा और फिलहाल आज 17 मई है और मई के आज इस खास दिन में आप सोचेंगे क्या खास है, तो बताना चाहूंगा आज बहुत सारी चीजें खास है और उन सारी खास चीजों के बारे में आपसे मैं गुफ्तगू करने वाला हूं। बने रहिए 107.1 FM रेनबो पर मेरे साथ, क्योंकि अब होगा बैक टू बैक गानों का एक ऐसा फरमान जिसके अंदर गाने तो होंगे साथ में होंगे एक बेहतरीन नॉलेज भी। गाड़ी अपना आराम से चलेगा, श्रुति पाठक की आवाज में हौले हौले बढ़िया सा गाना सुना रहा हूं, शुभ आरंभ, जबरदस्त ट्रैक है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: वेलकम बैक दोस्तों, फिलहाल बैक टू बैक सुन रहे हैं एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने। 5:20 हो चुके हैं और भाई साहब आज है 17 मई। सबसे पहले तो आपके बेस्ट फ्रेंड को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। आप सोचोगे कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में भाई साहब आप कैसे पता है, मन में आ रहा है ना सवाल, भाई साहब आज आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, आपको पता हो ना पता हो लेकिन मुझे पता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो अपनी जेब में से निकाल के देख लो, आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा होगा। अब आप भी सोच रहे होगे कौन सा बेस्ट फ्रेंड है वो जेब में रहता है, भाई साहब एक बेस्ट फ्रेंड है जो जेब में रहता है, जो हर हाल में आपके साथ रहता है, जिसकी अगर सांसें कम पड़ जाएं तो आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते बनते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में वो जोड़ बनता है। फिलहाल आप सोच रहे हो यार इतनी सारी पहली बुझा रहा लेकिन बता नहीं रहा कि बात क्या है, तो बताना चाहूँगा भाई साहब आज है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, यानी कि अपने फ़ोन को आज आप कह सकते हैं भाई साहब हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आज के दिन जो है उसका बर्थडे है, यानी कि आपके फ़ोन का बर्थडे है, जिससे आप पूरे दिन भर चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से आपके क्रश को आप गुड मॉर्निंग गुड बाय बोलते हैं, पापा को बोलते हैं पापा जी मैंने बिल पे कर दिया, और मम्मी को बोलते हैं माँ आप चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। तो बस आज ही के दिन जो है ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है 17 मई के दिन में। तो फिलहाल इसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहली बार बैडमिंटन कब उठाया था। अब आप ये मत बोलना भाई साहब जहाँ मच्छर दिख जाता मैं वहीं बैडमिंटन निकाल लेता हूँ, क्योंकि भाई साहब मच्छर से बढ़कर भी एक चीज़ आ चुकी है मार्केट के अंदर, इसके लिए आपको बैडमिंटन उठाना पड़ सकता है। कौन सी चीज़ है बताऊँगा आपको ठीक ये मज़ेदार गाने के बाद में, जो होने वाला अमित त्रिवेदी की आवाज़ में। मेरा नाम है के थांडा, आप सुन रहे 107.1 FM रेनबो पर आज का सबसे बेहतरीन ट्रैक इसके ठीक बाद।

बाज रहे अंधाधुन और अंधाधुन गाने बज रहे भाई साहब 107.1 FM पर। मेरा नाम है के थांडा और आप सुन रहे हैं बैक टू बैक एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने। यहाँ होता है लेस पकाना, सुनते हैं अगला गाना। लेकिन उससे पहले भैया जिसके बारे में बात चल रही थी वो तो कर ली जाए बोरे। जी हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि बैडमिंटन आप किसके लिए उठाते हो, तो मैं समझ गया आपने कहा होगा भाई साहब मच्छर दिख जाए हम बैडमिंटन उठा लेते हैं, जहां काकरोच दिख जाए हम बैडमिंटन उठा लेते हैं। लेकिन लेकिन लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने बैडमिंटन उठाया था भाई साहब आज इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के लिए 17 मई को। जी हाँ, आज के दिन 1997 में सानिया मिर्जा ने अपना पहला इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट खेला था। फिलहाल हम तो अपने घर के कॉकरोच मारने के लिए या फिर मच्छरों को जो है उनसे छुटकारा पाने के लिए उठाते हैं बैडमिंटन। लेकिन भाई साहब जीवन के अंदर कुछ लोग बैडमिंटन उठाते हैं कुछ ऐसा कर जाने के लिए इससे आपका ही नाम नहीं, सिर्फ पूरे देश का नाम ही नहीं, यूं कहिए कि पूरी दुनिया में आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। फिलहाल एक और पहचान से जुड़ी हुई चीज आपको बताने वाला हूं और वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है भाई साहब तैयब अली की आवाज में। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक आपके सामने हाजिर है। बने रहिए 107.1 FM पर मेरे साथ जिस लड़के का नाम है के थांडा।

ओ तैयब टेल मी हाउ हाउ, तैयब टेल मी हाउ हाउ। ओ लड़की तेरी ताजमहल सी हम करे वाओ वाओ, और लड़की तेरी ताजमहल सी हम करे वाओ वाओ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

तेरा इमोशनल अत्याचार भाई साहब, काहे को अत्याचार कर रहे हो? 5 बजकर ठीक 43 मिनट हो चुके हैं और अत्याचार से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं और 17 मई के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। आप भी कहने लग जाओगे 17 मई में ऐसा कौन सा खास दिन है सेलिब्रेट करेंगे? हाँ तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आपने अगर अपना FM अभी अभी ट्यून किया है तो बताना चाहूंगा कि आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे आप कैसे भूल सकते हो यार। आज आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे आप भूल गए? अब आप देखोगे तुझे कैसे पता चला कि हमारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है? सारी दिमाग की खोपड़ी में जितने भी उपाय थे सारे यहीं लगा दिए। तो बताना चाहूंगा बंधु कि आज आपके और मेरे दोनों के बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, क्योंकि आज का जो आपका दिन है ना ये कुछ खास है, क्योंकि आपके जेब के अंदर जो आपका बेस्ट फ्रेंड बैठा है ना, अब आप कहोगे आपके जेब के अंदर कौन सा बेस्ट फ्रेंड बैठा भाई, हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तो बताना चाहूंगा कि आपका मोबाइल फोन आज उसका बर्थडे है 17 मई को। जी हाँ, आज के दिन भाई साहब वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। तो अपने फोन को फटाफट थैंक यू कह दो, क्योंकि भाई साहब उसी के जरिए आपकी जिंदगी जो आजकल चल रही है, सुबह सुबह जो क्रश को मैसेज भेजते हो ना, गुड मॉर्निंग जी क्या हाल है और वाली मीम और रात को सोने से पहले गुड नाइट, पापा को फोन करके कहते हो ना पापा टेंशन मत लेना बाइक की EMI चुका दी है, मम्मी को फोन करके बोलते मम्मी आप टेंशन मत लो पढ़ाई कर रहा आपका लड़का। तो बस टेलीकम्युनिकेशन डे के दिन पर अपने फोन को बैटरी चार्ज करके कहो शुक्रिया। लेकिन उसके अलावा मैंने आपसे कहा था बैडमिंटन की दुनिया में आज एक बड़ा ही जबरदस्त खिलाड़ी पैदा हुआ था जिसने धूम मचा दी थी। आपने रैकेट उठाया है मच्छरों को मारने के लिए, इसने रैकेट उठाया था दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए। और भाई साहब इनका नाम है सानिया मिर्जा। 1997 में 17 मई को इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट खेला था। अब ये दो बातें तो हो गई, लेकिन अब आती है काम की बात। दुनिया में वो कौन सी चोट है जिसे पहले मेहंदी लगाई जाती है? सोचो बंधु सोचो, क्योंकि आज उसके लिए भी कुछ खास है मेरे पास। बने रहिए 107.1 FM पर। मेरा नाम है के थंड, अगला ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है परदेसी तोशी की आवाज में। बने रहिए 107.1 FM पर। मेरा नाम है के थंडा, यहां होता है लेस पकाना, सुनते हैं अगला गाना।

वेलकम बैक दोस्तों। फिलहाल आप सुन रहे हैं बैक टू बैक गाने, और आज के इस ट्रैक में आपने सुने वो गाने जो अमूमन शाम को जबरदस्त बना ही देते हैं। और इस शाम में कुछ और जुड़ने के लिए आपसे बात करना चाहूंगा कि अब आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि भाई साहब वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे भी है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, बीपी कम हो रहा है, तो थोड़ा सा कंट्रोल कर ले लो भाई, क्योंकि गाड़ी अगर सामने से कोई कट करे तो उसे कुछ मत कहना, जाने देना, क्योंकि कह देना उसे जा सिमरन जा, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। थोड़ा सा गुस्सा कम करना, बीपी थोड़ा बराबर रखना और खुश रहना। अगला ट्रैक आपके समक्ष हाजिर होगा बहुत जल्द। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज एक और बड़ा ही खूबसूरत सा दिन है, वो है शादियों से जुड़ा हुआ। इंटरनेट मैरिज ब्यूरो शुरू हुआ था आज एक दिन, 17 मई 2004 में पहला कमर्शियल इंटरनेट मैरिज ब्यूरो जो शुरू हुआ था। ये ऑनलाइन शादियों का दौर यूं कह सकते हैं शुरुआत हुई। अब मजेदार बात यह है कि लोग पहले तो मिलाते थे कुंडली, लेकिन आज की तारीख में नेटफ्लिक्स की वॉच लिस्ट मिलाते हैं। जो भी हो जाए भैया, दिल मिलना चाहिए बॉस, हैं, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। अगला गाना जो है मैं बजा रहा हूं, सुन लो, बढ़िया गाना है, नजर लग जाए ना आपको। थू थू थू मेरी तरफ से,

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: म्यूजिकली ओर्स में दोस्तों आपका स्वागत है। 6:16 हो चुके हैं और शाम का एक कारवां कह रहा है अंदाजे बयां में कुछ खास हो जाए। तो आज अंदाजे बयां में आपके समक्ष हाजिर हो रही है बड़ी ही खूबसूरत शायरी और वो है नन अदर देन राहत इंदौरी साहब की। वैसे तो उनके जितने भी शेर कहो एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन आज जो उर्दू के अदब के बेबाक शेर हैं वो आपके समक्ष मैं हाजिर कर रहा हूँ डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के। वो कहते हैं कि आँख में पानी रखो होठों पे चिंगारी रखो, आंख में पानी रखो होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राहत साहब की बात ये कहती है कि आंखों में अगर पानी है बातों में अगर दम है तो इस मुश्किल दुनिया में हौसले के साथ जी लो, सब मुश्किलें आप पार कर लोगे। बढ़ने के नए रास्ते और तरकीबें बस तलाशते रहो, हिम्मत मत हारो। और हिम्मत से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक आपके समक्ष हाजिर है दलेर मेहंदी साहब की आवाज में दंगल से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वेलकम बैक दोस्तों, 6:31 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं एक से बैक एक सुपर हिट गाने और इन सुपर हिट गानों के साथ में सूफियाना कलाम जो है मैं कह सकता हूँ शायराना अंदाज में, और वो है नन अदर देन डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के खूबसूरत शेर। अगला जो है बहुत ही खूबसूरत सा उनका लिखा हुआ एक शेर है, वो कहते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन जो उन मुश्किलों से लड़ता है वही सिकंदर कहलाता है। और राहत साहब का जो शेर है बड़ा ही खूब है, तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। वैसे तो आप इस शायर से ही समझ गए होंगे कि इस शायरी का क्या तर्क है, लेकिन फिर भी एक सीधा सा मतलब है उनकी जो ये पंक्तियों में लिखा हुआ है कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से डरकर भागो मत, बल्कि उनसे सीधा मुकाबला करो, दूसरों के सहारे यानी मल्लाहें बैठना छोड़ो, अपनी किस्मत खुद बदलो और तैर कर किनारे लगो।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं बैक टू बैक एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने, और राहत इंदौरी साहब के एक से बढ़कर एक खूबसूरत शेर। अगला जो शेर उनके जो है मायने बहुत ही गहरे हैं, बताना चाहूँगा कि क्या उन्होंने लिखा है और क्या खूब सुनाया है। वो कहते हैं कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। ये शेर हमें याद दिलाता है कि हम कितने ही कमज़ोर क्यों ना हों, ज़िंदगी की छोटी मोटी परेशानियाँ हमें बेशक तोड़ दें, अपनी विल पावर को हमें इतना स्ट्रांग रखना है कि मुश्किलें खुद आपके सामने घुटने टेक दें। अगला ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है सिद्धार्थ महादेवन की आवाज़ में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं बैक टू बैक, एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने और साथ में राहत इंदौरी साहब के खूबसूरत से शेर। वो कहते हैं कि जुगनू की रोशनी से अंधेरा ना जाएगा, जुगनू की रोशनी से अंधेरा ना जाएगा, कोई चिराग लाओ कि सूरज निकल सके। यानी अगर लाइफ में बड़ा बदलाव ना है तो छोटी मोटी मुश्किलों को, छोटी मोटी कोशिशों से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी पूरी ताकत, बड़े विजन के साथ मेहनत करनी होगी ताकि कामयाबी का सूरज चमक सके। फिलहाल इसी के साथ इस घंटे के बाद में अगला घंटा जो शुरू होगा 7 से 8, उसमें आप सुनेंगे बॉलीवुड यानी कि भारतीय हिंदी फिल्म जगत शर्मा के खूबसूरत से ट्रिवियास। अगला ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा मोहित चौहान की आवाज़ में बर्फी से।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, 7:00 ठीक 11 मिनट हो चुके हैं और आप अब सुनेंगे भारतीय हिंदी फिल्म जगत सिनेमा के खूबसूरत ट्रिवियास, यानी कि पर्दे के पीछे की कहानी। पहला ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है रमन महादेवन की आवाज़ में, खोलो खोलो दरवाजे, और ये है तारे जमीन पर का बड़ा ही खूबसूरत ट्रैक।

वेलकम बैक दोस्तों। आपने सुना है खूबसूरत सा गीत, और इस खूबसूरत गीत के जो ट्रिविया हैं वो भी बड़े खूबसूरत हैं। सल्लू भाई यानी कि सलमान खान ने इस फिल्म के टाइटल का सजेशन आमिर खान साहब को दिया था, और वो दोनों जब एक पार्टी में मिले थे तो बताया जाता है कि माफ़ी चाहूँगा, सलमान खान साहब ने इस फिल्म का टाइटल जो है आमिर खान साहब को सजेस्ट किया था। बात करें इस फिल्म के अंदर जो है दर्शील सफारी जब इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहे थे उस बच्चे का जो एक डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी से ग्रसित है, तो ये जो एक चीज़ थी जब उन्होंने इस कहानी पोर्ट्रेट करी तो वो उस वक्त पे हाई स्कूल में थे यानी कि 10th क्लास में थे, और जब वो 10th क्लास में थे तो स्कूल की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ये जो रिस्ट्रिक्शन थी भाई स्कूल उनकी पढ़ाई कैसे पूरी हो, या तो शूटिंग कर लें या पढ़ाई कर लें, तो उसमें आमिर खान साहब ने जो है इस दारोमदार को संभाला और उन्होंने इस बात की श्योरिटी रखी कि उनकी पढ़ाई ख़राब ना हो, और उसके लिए उन्होंने स्कूल की अथॉरिटी से भी बात करी और दर्शील की जो पढ़ाई है उसका भी पूरा ख्याल रखा, उनको पर्सनल ट्यूशन प्रोवाइड करी, और जहाँ तक बात है उनकी पढ़ाई का खर्चा भी उन्होंने ही संभाला। अगला ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है, यही बड़ा खूबसूरत सा है, राघव चैतन्या की आवाज़ में होने वाला है थप्पड़ से ये ट्रैक। बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म चर्चा में रही थी,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं बैक टू बैक, एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने। आपने अभी सुना ट्रैक कायपो छे का। कायपो छे का मतलब जानते हैं आप? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी जान जाएंगे। कायपोचे, वैसे हमने जब पतंग उड़ाई थी हम बोलते थे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कई शब्द हम बोल जाते हैं लेकिन उनके मतलब हमें पता नहीं होते। तो चलिए ये शब्द का मतलब जान लेते हैं। ये गुजराती का एक फ्रेस है, इसका मतलब है आई हैव कट द काइट, यानी कि मैंने पतंग काट दी है। जब हम पेचे लड़ाते हैं, यानी कि जब दो पतंगे आपस में लड़ती हैं और जब एक पतंग कट जाती है तो जिसने पतंग काटी है वो कहता है कायपोचे, यानी कि एक तरह से वो विक्टोरियस, यानी कि जीतने का उसका जो है वो जाहिर करने का एक तरीका है। बताना चाहूँगा इस फिल्म के अंदर अली हाशमी नाम का जो कैरेक्टर था, जो आपने देखा होगा बहुत छक्के चौके मारता है, वो अली हाशमी का कैरेक्टर जो था उसमें, जो आपने अगर उसमें पूरा देखा हो तो एक टी शर्ट में नंबर होता है, वो नंबर जो टी शर्ट के पीछे लिखा होता है वो 10 नंबर की टी शर्ट पहनता है। और वो 10 नंबर की टी शर्ट अगर आप देखें तो हमारे लिटिल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जो हैं उनकी भी जो है टी शर्ट से मैच होता है। और एक तरह से ये बहुत

जबरदस्त ट्रिब्यूट है लिटिल मास्टर ब्लास्टर को। इसमें चेतन भगत जी के बेटे जिनका नाम है ईशान, उन्होंने भी एक छोटा सा रोल प्ले किया था इसके अंदर। वो दिखाता है कि बच्चा जो अपनी माँ से जिद कर रहा है कि उसे क्रिकेट का बैट लेना है, जब वो मंदिर की तरफ जा रही हैं। अगला ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है बैनी दयाल और अदिति सिंह की आवाज़ में छू मंतर।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपने सुना है खूबसूरत सा गीत नेहा भसीन की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मेरे बदर की दुल्हन, और इस फिल्म के अंदर अली जफर के काम को खूब पसंद किया गया था, और इसके अंदर उन्होंने जो गाना गाया था वो गाना भी ज़बरदस्त काबिले तारीफ था। इस फिल्म के अंदर अगर देखा जाए तो इमरान खान ने काम किया था, और ये उनका यशराज के साथ पहला कोलेबोरेशन था। और जहाँ तक बात करूँ इस रोल की जो इसके अंदर निभाया था अली जफर ने, ये रोल पहले ऑफर किया गया था एक बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट को। आप गैस कर सकते हैं किसको ये रोल ऑफर किया गया था? थोड़ा सोचिए कौन हो सकता है, किसको ये रोल ऑफर किया जा सकता है, अगर आपके ध्यान में आ रहा हो तो। ये गाना सुनिए, और गाना सुनने के बाद आपको बताता हूँ ये रोल किसको ऑफर किया गया था, पर उसने इस रोल को मना करा और ये रोल आया अली जफर की झोली में।
1: दिल

देखिए जी, अगले शो की मधुबाला भी आ गई हैं आपके एंजेला, और मुझसे उन्होंने कहा है कि फटाफट मैं उनकी कुर्सी उन्हें दे दूं और यहां से कहूं कि आप लोगों को विदा हो, और 17 मई को यानी कि आपके बेस्ट फ्रेंड को आपने कर दी होगी हैप्पी बर्थडे वाली बधाई। फिलहाल अगर आप लोगों ने सही गेस किया है कि आज मैंने किसको हैप्पी बर्थडे आपके बेस्ट फ्रेंड को विश किया है, और आप जानते हैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता जो बिल्कुल अभी भी आए हैं या जिन्होंने अभी भी ट्यून किया, तो बताना चाहूँगा कि आज है वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, और ये जो डे है हमारे मोबाइलों को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि इन्हीं की ज़रूरत आप सुबह और शाम अपने परिवार वालों से दोस्तों से कम्युनिकेट करते हैं। फिलहाल मैं आपसे लूँगा विदा, बेहतरीन से ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहे हैं, मुस्तफ़ा जहीद की आवाज़ में होने वाला है तो फिर आओ, मैं आऊँगा बहुत जल्दी यानी कि 22 तारीख को। टिल देन अपना रखो ख्याल और अगले शो के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि शो की मधुबाला आ चुकी हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपेन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय

0: डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
1: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
2: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
3: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडली नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी।

अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्ति

गत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: 11:05:35 वादे के मुताबिक हिना मौज हाजिर खिदमत है प्रोग्राम रंगे महफिल के साथ एक बार फिर आकाशवाणी FM रेनबो पर। मेरा एक बार फिर से पुरखलूस आदाब कबूल कीजिए। गजल के साज उठाओ बड़ी उदास है रात, गजल के साज उठाओ बड़ी उदास है रात, नवाए मीर सुनाओ बड़ी उदास है रात।

इतनी खूबसूरत सी गज़ल और इसमें छुपे हुए वो एहसास और जज्बात जो शायर बयान करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, गज़ल की बात हो और लफ्ज़ों के उतार चढ़ाव का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन गज़ल सिर्फ अगर कहा जाए तो अल्फाज का खेल तो नहीं है, बल्कि इसमें एहसास और जज्बात की वो दुनिया शामिल होती है दोस्तों, जो कहीं भी हो इंसान इसको सुनकर इस खूबसूरत सी गज़ल में अपनी कहानी हर इंसान ढूंढ ही लिया करता है। इसमें हर इंसान की वो कहानी वाबस्ता होती है जिसको ढूंढने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, किन्हीं लफ्ज़ों को टटोलने का एहसास नहीं होता और कोई शिकन पड़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये गज़ल अपने अंदर हर वो एहसास, हर वो जज्बात और हर वो कहानी समेटे हुए होती है जो हमारी ज़िंदगी का अक्स होती है।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

ग्यारह बजकर 24 मिनट 2 सेकेंड हिना मौज के साथ हैं, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम रंगे महफिल। गज़लों का कारवां रवा दवा है। दोस्तों, कहा जाता है कि गज़ल मोहब्बत की ज़ुबान है, लेकिन सच तो ये है कि गज़ल सिर्फ इश्क जाहिर नहीं किया करती, बल्कि इंसानी ज़िंदगी का हर पहलू बयान करती है। जब कोई दिन भर की थकान के बाद अपने सपनों को संजोता है, तो गज़ल उसके सपनों के पीछे छुपे दर्द को टटोल लेती है। गज़ल के लफ्ज़ उसके दर्द की दवा बनते हैं और सुकून का एहसास दिलाते हैं।

दोस्तों, गज़ल की बात हो रही है तो ये कहना गलत ना होगा कि गज़ल कभी किसी की खामोशी पड़ती है तो कभी भीड़ में रहकर भी। जब इंसान अकेला महसूस करता है तो गज़ल उसके दिल का हाल बयान करती है। गज़ल हमें बताती है कि ज़िंदगी सिर्फ हंसी का ही नाम नहीं है, बल्कि इसके बरक्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल हैं। और हमारी ज़िंदगी में भी टूटने, बिखरने, संभलने और फिर मुस्कुराने का सफ़र है ये ज़िंदगी। और इस सफ़र को बखूबी बयान करती है गज़ल, क्योंकि गज़ल के अंदर वो ताकत है, इसके लफ्ज़ों में वो समात है कि हर इंसान इसको सुनने और पढ़ने पर मजबूर हो जाता है।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ हुज़ूर, ये छोटी छोटी बातें, मुलाकातें और वादे वफा करने वाली बातें, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इन्हीं सब एहसास जज्बात को एक शायर जब कागज़ पर पिरोता है तो गज़ल में तब्दील कर दिया करता है। दोस्तों, एक आम इंसान की ज़िंदगी में रोज़ नए संघर्ष आते हैं, कभी रोज़गार की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी अधूरे सपनों का दर्द, और गज़ल इन तमाम एहसास जज्बात को नर्म लफ्ज़ों में पिरो देती है। यही वजह है कि जब कोई शेर दिल को छू जाता है तो इंसान कह उठता है कि ये तो मेरी बात है, ये तो मेरे ही दिल का कोई गोशा है जो बयान किया जा रहा है। गजल हमें रुलाती भी है दोस्तों, और कहीं ना कहीं जीना भी सिखाती है।

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

11:54 और 48 सेकेंड, कुछ ही देर का वक्त हमारे पास बाकी है गज़ल की गुफ्तगू करने के लिए। दोस्तों, गज़ल कहती है कि अंधेरों के बाद उजाला ज़रूर आता है और हर टूटे दिल में फिर से उम्मीद जग सकती है। गज़ल आम इंसान को ये एहसास दिलाती है कि वो अपनी तकलीफ़ों में अकेला नहीं है, दुनिया में और भी दिल हैं जो उसी दर्द, उसी इंतज़ार और उसी मोहब्बत से गुजरते हैं। गज़ल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है दोस्तों कि वो बड़े बड़े महलों की नहीं बल्कि आम इंसान के छोटे छोटे जज्बातों की, एहसासातों की बात करती है। कभी चाय की प्याली में छुपी तन्हाई, कभी बारिश में भीगी यादें, तो कभी अधूरी मोहब्बत का दर्द, हर एहसास को गज़ल बड़ी खूबसूरती से जी लेती है। इसी खूबसूरत और नायाब बात के साथ आखिरी गज़ल आपकी समातों की नज़र करते हुए हिना मौज आप सब से अब रुख्सत तलब करती है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सिटी लाइट्स में, तो बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर और सुनते रहिए हमारे प्रोग्राम्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व

तुम्हें केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सिंतुआंग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि ये गिरफ्तारी व्यापक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर कार्रवाई के बाद संभव हुई है। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा फर्जी है। अभी अभी मिले समाचार के अनुसार भारत और स्वीडन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर राजी हो गए हैं। यह सहमति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन के बीच हुई बातचीत के दौरान बनी। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के 194 रन के लक्ष्य को दिल्ली ने 4 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं एक अन्य मुकाबले में कल धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर रात के 12:05 हो चुके हैं। ये समय है कार्यक्रम जीरो आर शो का। तो आइए हमारे साथ रेनबो पर और बने रहिए, लेते रहिए संगीत का आनंद।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगा

वाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की थी। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सिंतुआंग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि ये गिरफ्तारी व्यापक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर कार्रवाई के बाद संभव हुई है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जा रही है। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित

समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल दो दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PAIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार

प्यार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।

0: digital.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके आंकड़ों की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
5: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
4: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
5: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
4: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
5: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साथ साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में नए शामिल और पदोन्नत किए गए मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए हैं। विभागों का ये बंटवारा 10 मई को सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के बाद हुआ है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है, इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई

0: वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। साथ ही स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:05:53 और ये समय आपके पसंदीदा कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का। तो लीजिए आनंद लेते हैं इन खूबसूरत से गीतों का मेरे यानी अलमास रजा के साथ। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार। ये प्यारे से गीत आपके लिए है।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।

0: एसएमएस कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इसके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह का 4 बजने जा रहा है, कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता

0: के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वदेशी कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरों के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में नए शामिल और पदोन्नत किए गए मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए हैं। विभागों का ये बंटवारा 10 मई को सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के बाद हुआ है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है और इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए यह मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें 4 दिनों का अंतर हो सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है सुबह के 4:05 और 53 सेकंड्स। और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा, ये प्यारे से गीत आपके लिए। आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी अलमास रजा का नमस्कार।

0: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: वाणी आकाशवाणी। हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो

सारेगामा ये कार्यक्रम श्रोता सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 MHz पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 5 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब आप समझ